0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीक की मदद से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। यह पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर देश भर में विशेष कार्यक्रम शुरू करेगा। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को की थी। इसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और अच्छी गुणवत्ता वाली प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। समारोह के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्षों में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब भारत के 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हैं। इससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि यह पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और DMK पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक के लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुई आग की दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50

0: 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। यह फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया है। हालांकि दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष संघर्ष विराम चाहते हैं और शांति वार्ता जारी है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि उनका देश कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के प्रति प्रतिबद्ध है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ दे असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। ज्ञान अमृत।

0: उपकार करन वाले नू सुख इस तरह मिलते हैं जिमें मेहंदी पीण वाले नू मेहंदी दा रंग।
1: आओ हुण सरवण करदे हां भगती संगीत प्रोग्राम आराधना।

0: हिंद जी, रुलिया राम जी, जय हिंद।
1: जय हिंद जी, रंगा सिंह जी, बचाड़ो की हाल चाल है?
0: आदे चले, वाह वाह पड़ी, तुसी अपना सुनाओ।
1: तगड़ा अके जेहो जा तेरा अन्न पानी, ओहे जा साडा कम जानी।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ
1: ये सिर्फ अपने ते नहीं ढुकदा कम,
0: ये बाकियां ते भी ढुकदा
1: हाँ, जो जिया जंत है ना, जनौर जो साढ़े नाल ने,
0: जी।
1: उन्होंने भी यही गल जी है फिट बैठती है। हुण देखो, गां मझ आपां रखदे आं ते उहनूं जिदां दा हरा पट्ठा पावांगे ते बाल्टी दे विच उही कुछ आउणा ना रंगा सिंह जी।
0: बिल्कुल, देखो पैदावार किसी भी चीज़ की आ, उन्हों खाद खुराक चंगी मिले तो आपां खुराक भी चंगी मिल सकती है
1: देखो रंगा सिंह जी, किते धंदे अपने कोल बीसियां आपां सारे जाणदे आं,
0: जी।
1: पर मुर्गी पालन दा किता धंदा एक ऐसा किता धंदा है जिहदी साइंस बहुत बरीकी दी है। और जिदा कहने भी हर बंदे नूं, मां बाप दी किसी नूं सुआदी वाला घर है, हर बंदे नूं फिट नहीं बैठता, क्योंकि इहदे च इहनां च मुसामत आपां सारे जाणने के हुंदे नहीं।
0: हाँ
1: सो इस करके मौसमां दा होर इहनां च कई तर्हां दीआं महामारियां जिहड़ियां है इस धंदे दे विच बहुत ज़्यादा नुकसान कर जांदियां है।
0: जी,
1: हर बंदे नूं इहदे नाल पंगा नहीं लैणा चाहीदा, और बिना जानकारी तो इस किते नूं करना नहीं चाहीदा।
0: करना नहीं चाहिए,
1: ते
0: मैं कहना
1: इहदे
0: कि पूरी ट्रेनिंग लेनी चाहिए।
1: हाँ, ये तो देखो रंगा सिंह जी, जिहड़ी तुसीं जिक्र कीता ना, कम दा कोई भी है
0: हाँ
1: वह बिना जानकारी तो करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि साढ़े कोले रंगा सिंह जी, पहले समा कुछ होर सी, हुण साढ़े कोले ज़रायत यूनिवर्सिटी है,
0: हाँ
1: गढ़वासू दी यूनिवर्सिटी है, जे आपां फसलां दा कोई काम करना साढ़े कोल ज़रायत दी यूनिवर्सिटी है,
0: जी,
1: ते जे आपां कोई किते धंधिआं दा पशु पालन नाल संबंधित काम करना आपणे कोले गुरु अंगद देव वैटनरी ते एनीमल साइंस यूनिवर्सिटी है।
0: हाँ
1: ये तो अलावा महकमा ज़रायत है, वक्ख वक्ख बागबानी का काम करना ते बागबानी विभाग है अपने कोले। हुण तां तुसीं देखो ना, बिना जानकारी वाली तां गल कर ही नहीं सकते।
0: ना जी, देखो सिखलाई वास्ते अपने कोल इन्ने अदारे आ, उत्थे
1: हाँ,
0: रहन सहन दा प्रबंध
1: मुफ्तों
0: न
1: मुफ्तों
0: मुफ्त मुफ्त।
1: बिल्कुल जानकारी भी तुहानूं, जिहड़ी ट्रेनिंग है वह किसे बिना पैसे तो तुहानूं दित्ती जांदी है।
0: हाँ
1: सो इस करके बच्चे वाले, दो चार दिन की ट्रेनिंग लैके काम नूं करोगे, उहदा फायदा तुहानूं मिलना, नुकसान जिहड़ा तुहानूं नहीं होना। सो इस करके फायदा लैणा चाहिए जिथों मिले।
0: हाँ
1: जदों आपां गल करदे आं मुर्गी पालन दी, रंगा सिंह जी देखो, एक जानकारी नाल बहुत सारियां चीज़ां जिहड़ियां साडे हत्थ 'च आ जांदियां ने, सानूं
0: जी,
1: पता चल जांदा है। एक गल होर हुंदी है कि कोई भी कम आपां करना है, तो कम करन दा कोई मेहना नहीं है, पर कम नूं छोटे पद्धर तों करो। जे हुण मुर्गी पालन दा कम किता आपां नवां करना है, शुरू करना है, भाई उहनूं छोटे पद्धर तों शुरू कर लो,
0: हाँ
1: हौली हौली जिहड़ा उहदे 'च बढ़ोतरी करदे
0: बढ़ोतरी
1: रहो, है
0: करो,
1: ना, वो स्टैप बाई स्टैप वाली गल हो जाती है ना।
0: बिल्कुल। अच्छा, तुसीं गल कीती सी खाद खुराक बारे, ते मुर्गियां लई खुराक कहो जी होनी चाहीदी?
1: देखो जिहड़ा रंगा सिंह जी, मुर्गी पालन दे किते च आपां सारे जाणदे आ वी ज़्यादा फीसद जिहड़ा साडा खर्च है
0: ओ
1: वह
0: खुराक
1: खुराक
0: ते
1: ते ही आउंदा है। इस करके खुराक दा इस किते धंदे दे विच बहुत बड़ा थां है। और खुराक जे बच्चे वाले, दूजी गल ये भी है वी बाजारू नालों, जे ताडा किता धंदा इस तरह का है कि तुसीं जे बाजारू लैणी तां किसे भरोसेमंद थां तों,
0: हाँ
1: नहीं तां
0: बिल्कुल,
1: तुसीं अपनी फीड, रंगा सिंह जी कई साडे मुर्गी पालक भरा वीर ऐसे है अपनी फीड आप तैयार करते हैं।
0: हाँ
1: ते इहदे च इक होर भी है रंगा सिंह जी, कि हुण तरीके आ जांदे ने,
0: जी,
1: क्योंकि ये खांदियां घट है खिलारदियां ज़्यादा है,
0: हाँ बिल्कुल,
1: हग नहीं, खुराक महंगी है। आपां जदों देखदे आं खुराक ते खर्चा आउंदा है, कि खुराक तुसीं कि जदों तैयार करनी है इस तरह तैयार करो कि किन्ने दिनां दी तुसीं खुराक तैयार करनी है, इहना तुहाडी तैयार कीती खुराक ही खराब हो जाए।
0: बिल्कुल
1: मौसम
0: सही
1: दे
0: है।
1: लिहाज नाल आपां देखदे आं कई वारी उल्ली पै जांदी है, बड़े नुकसान हो जांदे
0: हाँ
1: है कि नहीं। फिर तुहाडा ढंग तरीका पाउण दा की है, फिर खुराक पाउण दा समां की है कि नहीं। सो इस करके हुण तां नाले साडे कोल ना पिंजरा विधि तकनीकां ऐसियां आ गईयां, पाणी पीण दे विच चुंझ मारदियां, पाणी अपने आप

राजा जनक के यज्ञ में धनुष भंग हो चुका है। परशुराम वहां का दृश्य देख क्रोधित हैं। उनके वचनानुसार जिसने शिव का यह धनुष तोड़ा है वो सहस्रबाहु के समान उनका दुश्मन है। परशुराम निरे मुनि और बाल ब्रह्मचारी ही नहीं अत्यंत क्रोधी हैं और विश्व भर में क्षत्रिय कुलनाशक के रूप में विख्यात हैं। अपने भुजबल से उन्होंने कई बार क्षत्रिय वंश का नाश करके पृथ्वी ब्राह्मणों को दे डाली है। क्रोध की चरम सीमा स्वरूप उन्होंने लक्ष्मण को अपना विश्व विख्यात फरसा दिखाया, किंतु लक्ष्मण कौतुकवश खेल ही खेल में मुनि के कुपित वचन सुनते जा रहे हैं। मुनि को भृगुवंशी समझ और यज्ञोपवीत देखकर सब कुछ सहते जा रहे हैं।

0: योगा फॉर हेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये अंग्रेजी वार्ता 7:45 सुनोगे। वार्ताकार होंगे डॉक्टर रजनी शर्मा। जिंदगी सीने प्रोग्राम रात 8 बजे होएगा। रात 9:30 तो से सुनोगे प्रोग्राम खेड़ संसार। रात 10:02 शास्त्रीय संगीत का प्रोग्राम तो से सुनोगे सुर साधना। इस प्रोग्राम च अज उस्ताद अमजद अली खान होना दा सरोत ते वजाया राग दे सुनोगे। रात 10:30 पेश करांगे प्रोग्राम सरगम। DTH ते आकाशवाणी पंजाब सेवा दे जलंधर केंद्र ते तुसी 3 बजे सुनोगे प्रोग्राम जिठियां मिठियां FM 100.6 MHz FM विविध भारती ते तुसी सुन सकते हो। सवेरे 10 बजे प्रोग्राम रंगला पंजाब। तुहानू याद दिला दिए कि तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही ते मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR राही भी सुन सकते हो। सो इस जानकारी अज रात तक प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्राम से
1: खेडां नूं उत्साहित करन लई आकाशवाणी जलंधर दा खूबसूरत उपराला प्रोग्राम खेड संसार हर मंगलवार रात 9:30। क्रिकेट स्टेडियम च कौन कर रहा चौकियां छिक्कियां दी बरसात, हॉकी च किन्ने गोल दाग के किन्नू दित्ती मात, कुश्ती दे गद्दियां ते दाल आके कौन जित्तिया बाजी ते किन्ने सुनहरे निशाने ला के देश वासियां नूं कीता राजी। खेड मैदानां दी दिलचस्प कहानी, खिडारियां दा जनून उन्हां दी ही जुबानी। प्रोग्राम खेड संसार हर मंगलवार रात 9:30 सिर्फ आकाशवाणी जलंधर ते।
0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असि आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले सवेर दे 6:55 हो रहे हैं। हुण तो बस कुछ ही देर बाद तुसी संस्कृत वे समाचार सुनोगे।

0: षट विंशत्यधिक द्विसहस्रतम वर्षस्य आईसीसी महिला विंशति प्रति विंशति विश्व चषक क्रीडाया प्राक् ह्यः प्रथमायां पूर्वाभ्यास क्रीडायां भारतेन वेस्टइंडीज दलं षड् विंशति धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुण पेश ने अज दियां हुण तक दियां मुख खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन विखे आयोजित समारोह च वक् वक् हथियारबंद पुलिस बलों के पुलिस कर्मचारियों को बहादरी पुरस्कार प्रदान किए। लोक सभा स्पीकर ओम बिरला कल चंडीगढ़ च राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। पेट्रोलियम ते कुदरती गैस मंत्रालय ने कहा है पछमी एशिया विच टकराव के बावजूद देश विच कच्चे तेल एलपीजी अते कुदरती गैस की सप्लाई पूरी तरह आम वांग बनी हुई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल वालों देश भर में 100 उद्योगिक पार्कों के विकास को तेज करने लई भव्य पोर्टल की शुरुआत। भारतीय दूताघर ने ईरान विच हाल ही के दिनों च विगड़ती स्थिति के मद्देनज़र भारतीय नागरिकों ईरान की यात्रा तो बचण की सलाह दी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कल 355 नौजवानों नू नियुक्ति पत्र सौंपे। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने एक अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी के हवाला नैटवर्क का पर्दाफाश करदिया एक अफगान नागरिक समेत 4 मुलजमान नू गिरफ्तार किया। पंजाब के स्थानक सरकारां बारे मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने मिशन क्लीन पंजाब की शुरुआत की। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा वालों सिक्ख्या विभाग दियां 5 जथेबंदियां नाल मीटिंगां, कहा सरकार गलबात अते सहमति राही मुलाजमान दे मसले हल करन लई वचनबद्ध है। ते मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों लई पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ ते दिल्ली विच लू दी पेशनगोई कीती है। ए सन अज दियां हुण तक दियां मुख खबरां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुण पेश कर रहे हैं प्रोग्राम सोनी सवेर।

0: अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मारीवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों की सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर फिर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: गृह मंत्रालय ने कहा है ये प्लेटफॉर्म व्यापार सुगमता, संपर्क, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप है। LPMS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भूमि बंदरगाहों के संचालन को एकीकृत प्रणाली में समाकलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रणाली कार्गो और यात्री प्रसंस्करण के लिए स्लॉट बुकिंग, भुगतान, ट्रैकिंग और सिंगल विंडो क्लीयरेंस सहित संपूर्ण डिजिटल कार्य प्रभावी प्रदान करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के दावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंडपोर्ट में नव विकसित हितधारक आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे सीमा प्रबंधन और कर्मियों के लिए बुनियादी ढांचागत सहायता मजबूत होगी। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
5: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
3: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और खाद्य सुरक्षा मजबूत करना है।
6: भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत कृषि कार्य समूह की बैठकों से हो रही है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। 12 जून को कृषि मंत्रियों का विशेष संवाद आयोजित होगा, जिसका फोकस लघु किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर रहेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
3: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा ₹75 का स्मारक सिक्का और ₹5 का डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार।

0: मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत व्यय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
2: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे 5 लाख रुपए मिलेगी।
1: वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
3: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है। बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रह रहा हूँ।
1: सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवम्बर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अस्पतालों के विस्तार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष में भारत के कोयला और खनन क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। हैदराबाद में कल श्री रेड्डी ने बताया कि भारत ने 1 अरब टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड हासिल कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश बन गया है। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र से लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हो गए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतकों के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं इस्पात मंत्री HD कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की है। समाचार कक्ष से मैं चाहत सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में MT मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का आभार भी जताया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने

0: की सूचना मिली। हादसे की जांच जारी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए $1,00,000 के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। H-1B वीजा के लिए जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ईरान और इसराइल के बीच एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांतिवार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित हो सकती है। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में अफगानिस्तान ए की टीम भी शामिल है। भारत ए का अगला मैच अफगानिस्तान ए से बृहस्पतिवार को होगा। फाइनल 21 जून को होगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। भारती फूलमाली ने नाबाद 56 रन और स्मृति मानधना ने 39 रन का योगदान दिया। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में आज लू चलने की आशंका व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में दिन भर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे और उत्तरी तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में आज तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों में बगावत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, TMC में टूट, 20 सांसदों का अलग गुट NDA के साथ। पत्र के अनुसार काकोली घोष की अगुवाई में अलग सेटिंग की भी मांग। दैनिक जागरण ने तृणमूल में एक और टूट शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जैसी आशंका थी तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों ने भी ममता बैनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी है। इससे पहले पार्टी के 80 में से 60 विधायक अलग गुट बनाकर नेता प्रतिपक्ष का चयन कर चुके हैं। पंजाब केसरी ने विपक्षीय एकता का अंतर विरोध शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, हाल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली शानदार सफलता बताती है कि इंडिया गठबंधन में इतनी भी कुव्वत नहीं है कि उसके सहयोगी दलों के नेता एक साझा मंच पर इकट्ठे होकर भाजपा को ललकार सके। हिंदुस्तान ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को का साक्षात्कार देते हुए लिखा है, चीन से सिर्फ उम्मीद के भरोसे शांति संभव नहीं, थिएटर कमांड पर भी सहमत। जनसत्ता के अनुसार इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए, 8 अप्रैल के बाद यह गंभीर झड़प, ट्रंप की अपील के बाद दोनों देशों ने किया संघर्ष विराम। पत्र के अनुसार भारत ने नागरिकों को सलाह देते हुए लिखा है, ईरान और इसराइल छोड़े भारतीय और यात्रा भी ना करें। अमर उजाला ने दिया है, वायुसेना के हेलीकॉप्टर पहुंचाएंगे नीट के प्रश्न पत्र, पहली बार सरकारी प्रोफेसर और शिक्षकों ने तैयार किया पेपर। बाहरी को जिम्मेदारी नहीं, लॉजिस्टिक्स सेंटर से परीक्षा केंद्र तक GPS से निगरानी। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, पिछले 12 वर्ष में भारत में कई परिवर्तन आए। देशबंधु की सुर्खी है, कल्याणकारी योजनाओं से 12 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में MT मरवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दाम्बुला में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाश

महक पंजाब दी प्रोग्राम दे विच हुणे तुसी ए गीत फिल्म चन परदेसी चो सुन रहे सी सुरेंद्र कोहली मनमोहन सिंह ते साथियां दी आवाज़ च। आओ प्रोग्राम दा हुण अगला ए गीत सुनिए फिल्म लौंग दा लिश्करा चो, आवाज़ जगजीत सिंह हुणा दी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नवी दिल्ली विच लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS की शुरुआत करेंगे। अंतरराष्ट्रीय ब्रिक्स खेतीबाड़ी सम्मेलन आज तो मध्य प्रदेश के इंदौर विखे शुरू हो रहा है। मस्कट विच भारतीय दूतघर ने हॉर्मुज़ पणजोड़ के दक्षण

कुमार सानू ते अलका याग्निक दी आवाज़ वे तुसी एह गीत सुन रहे सी यस बॉस फिल्म चो। अज दे फिल्म संगीत प्रोग्राम दे विच तुहानू यस बॉस फिल्म दे ही गीत सुनावांगी। इस फिल्म दा अगला गीत उदित नारायण ते अलका याग्निक दी आवाज़ वे सुनदे हां।

सुना है लोग उसे आँख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है दर्द की गाहक है, चश्मे नाज उसकी, सो हम भी उसकी गली से गुजर के देखते हैं।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: तै सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: प्रोग्राम हेलो फरमाइश तुसी सुन रहे हो अगले कोलो दोस्त देखने के डे आई नहीं। हेलो
1: मैडम जी नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो
1: हेलो फरमाइश
0: जी?
1: शीश गुलियानी दिलकुशा मार्केट जलंधर तो जी।
0: हाँ जी शीश जी, की हाल चाल ने?
1: हाल चाल वधिया मैडम जी, फर्स्ट क्लास गर्मी का मजा ले रहे हैं,
0: चलो
1: प्रोग्राम सुन रहे हैं जी,
0: वधिया
1: गर्मी
0: गल है जी,
1: दूर हो
0: हर
1: रही है।
0: मौसम का ही आनंद लेना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल नहीं लगती नहीं गर्मी मैडम जी, गाना सुनी जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: फिर अज तुहाडी पसंद का गाना केड़ा सुनाइए असी?
1: फिल्म है जी बोवी। ते मैडम गर्मी का जरा मौसम है ना, तापमान गर्म हो जाता, वाइफ में जरा कुछ कह देना सब्जी बना दे, रो पाती कहनी मैं मैके चली जाऊंगी।
0: बिल्कुल जी, ये बनता है गुस्सा, क्योंकि सिर्फ महिलावां ही क्यों काम करन, नाल हाथ बटाना तो बनता ही है ना। फिर
1: मैडम तुम मेरे वालों क्यों लगा
0: ये देखो, असी इन्नी मेहनत दे विच जो महिलावां ने घर दे विच किचन दे विच काम लगातार कर दिया ने, पर फिर भी असी नुक्स कर दिंदे हां कि नमक घट है, हल्दी घट है, या फिर इस तरह दा कोई भी नुक्स कर
1: गलती
0: दिंदे
1: गलती गलती होगी मैडम, मैं तो तुझे मेरा साथ देता ही नहीं।
0: चलो जी,
1: चलो कोई
0: वैसे मायके जाण दा समा भी है, छुट्टियां चल रही हैं
1: हाँ जी हाँ जी हो जाना।
0: ते
1: मैं फिर सवेरे कहती मैं सब्जी नहीं बनानी आई गर्मी है, मैं चल रहा दे बारो खा ला के, कहती जे मैं ज्यादा तंग किया मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहिए।
0: ठीक
1: हाँ जी
0: है। चलो जी, गाना दस दिता तुसी, गल्ला गल्ला दे विच केड़ा गाना सुनना
1: हाँ जी हाँ
0: चाहते
1: जी
0: हो?
1: वो भी फिल्म।
0: शुक्रिया
1: हाँ
0: जी
1: जी
0: कॉल
1: शुक्रिया
0: करन दे
1: शुक्रिया।
0: लई।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा।
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। 11 बज रहे ने, आओ समाचार सुनते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
2: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुँच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक सोशल मीडिया

पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जनकल्याण के लिए समर्पित है। प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना, जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि तलाशी अभियान में शामिल परिसरों में हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय और व्यावसायिक कार्यालय शामिल हैं। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र आग दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हुए हैं। इस्पात मंत्रालय के अनुसार ये हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर गहरा शोक जताया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। अमेरिका में भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। H-1B वीजा के जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित भी हो सकती है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि धरती आबा का जीवन साहस, आत्मसम्मान और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक था। श्री शाह ने कहा कि आज भी बिरसा मुंडा का धर्मांतरण के विरुद्ध संघर्ष और आदिवासी गौरव के प्रति उनका समर्पण लाखों देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच वनडे त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मुकाबला श्रीलंका में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान तिलक वर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12वें ओवर में 2 विकेट पर 55 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 864 किलोहर्ट्स, FM 100.8 मेगाहर्ट्स, FM 100.9 मेगाहर्ट्स, FM 103.6 मेगाहर्ट्स अते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। साढ़े स्रोते आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम न्यूज़ ऑन एयर ऐप दे जरिए ते नाल वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हैं।

प्रोग्राम चल रहा है जी धमक जलंधर पैंती। ये प्रोग्राम तुसी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो सुन रहे हो। प्रोग्राम दे विच सब तो पहले शिरकत की पूरे 10 बजे नाम बोलता जी टैगोर गार्डन नवी दिल्ली तो रविंदर सिंह छाबड़ा इंद्रजीत कौर ते स्वीटी छाबड़ा। लो जी तुहाडे लई ताड़ियां क्योंकि तुसी पूरे 10 बजे साढ़े कोल पहुँच गए हो। शुक्रिया मेहरबानी तुहाडी भी है जी जी। और अगला सुनेहा पूरे 10 बजे जिन्होंने पहुँचाया है श्री फतेहगढ़ साहब तो रामनाथ अतापुर सुखमनजीत सिंह सहजप्रीत कौर ये भी पहुँच गए। बहुत बहुत शुक्रिया जी तुहाडा। और अगला सुनेहा साढ़े तक पहुँचाया है दर्शन सिंह अवतार सिंह जबर जंग सिंह चीमा पिंड अलूणा म्याना तहसील पायल जिला लुधियाना तो ये भी पहुँच गए ने। और अगला सुनेहा साढ़े तक पहुँचा खनौरी मंडी पुराने स्टेट बैंक वाली गली बिंदु बेदी रिंकू कैंथ बलवीर सिंह अरनो कामरेड हरभजन सिंह। शुक्रिया जी तुहाडा भी। पदमपुर जिला श्री गंगा नगर राजस्थान तो मेयर अरोड़ा ममता कीर्ति ते भूमिका अरोड़ा ये भी पहुँच गए। मक्खू तो बिल्ला बजाज हैप्पी कपूर फिरोजपुरी ते मनीष बजाज हाजिर ने। सतीश अनेजा बिमला अनेजा शेफाली शेफी मास्टर डेविस चंडीगढ़ तो हाजिर हो गए ने जी। और अगले सुनेहे नाल पिंड शाहपुर मेहतपुर तो बूटा सिंह विजयपाल सिंह अजयपाल सिंह पाहुलजोत सिंह अनाहत कौर लवप्रीत कौर परविंदर कौर पिंड कबूल शाह खुबण जिला फाजिलका तो वधावा सिंह बलकरन तन्नू पवी जस्सी सत श्री अकाल भेज रहे ने जी। सारिया नू आदे आई नमस्कार सत श्री अकाल अदाब सारिया नू कर दिती अपा। अगला सुनेहा साढ़े कोल पहुंचिया झज्जर हरियाणा तो बिट्टू भाटिया और रीटा भाटिया हुरांदा फ्रेंड्स कलोनी करनाल तो गुरविंदर सिंह पांधा बलविंदर सोढ़ी यश कुमार वर्मा मनविंदर सिंह पांधा। लो जी गीत जड़ा है सुरिंदर कौर की बड़ी फरमाइश आ रही है जरूर सुनावांगे जी। पिंड बनवाला हनुमंता फाजिलका तो विनोद मायल सीमा लक्षिता यसिका माता विद्या देवी ते सारा ही मायल परिवार आकाशवाणी जलंधर हाजिर। पिंड इस्लामवाला डिस्ट्रिक्ट फाजिलका तो सोनलाल राठी ओम प्रकाश शगुन राठी लवकुश वर्मा शतरपाल सिंह रजिंदर सिंह बाबू सिंह काका पट्टी पिंड कमालवाला तो गुरमेज सिंह विरक और मेन बाजार मंडी लादुका डिस्ट्रिक्ट फाजिलका तो वरिंदर कालरा रेखा कालरा प्रेक्षित प्राची टिंगरा ते सारा ही कालरा परिवार साढ़े कोल हाजिर है। अगला सुनेहा जेड़ा जी तुसी आपे दसो कौन ने पूरे दिल नाल मोरा नाल फुल्ला नाल रुखा नाल पहुँच गए ने जी। बिल्कुल सही कहा तुसी चकला बाजार समाणा शहर तो पप्पू राजा खुशदिल संगीता राणी जिंदल पप्पू स्माइल खुशदिल हसमुख लाल जिंदल संजीव सुनीता बंटी जिंदल आरजू महक खुशदिल ते सारा ही खुशदिल परिवार। असी भी गुलाब दे फुल्लां तो ज़्यादा तुहाडा धन्नवाद करते हैं जी। कृष्णा पार्क दिल्ली तो सुखविंदर सिंह जौड़ा सिटी दीवाना ठंडी हवा देन आ गए जी। पंखा रोड जनकपुरी तो पिंटू दीवाना रजिंदर सिंह ओबराए। और अगला सुनेहा

जी, एक गीत जिहड़ा ना एक कंप्यूटर दे उत्ते जदों आ गया ते नखरा दिखाण लग पिया। कोई नहीं, तुहाडी जिहड़ी फरमाइश है ओह जरूर कोई तकनीकी प्रॉब्लम दे करके जिहड़ा है कंप्यूटर दे उत्ते नहीं चल रहा गीत। ते लो फिर सुरिंदर कौर दी आवाज़ 'च कोई होर गीत तुहाडे नज़र कर रही हां।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन, ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच। परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: ते सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया

प्रोग्राम चल रहा जी धमक जलंधर पैंती अंतराल तो बाद एक बार फिर तो निघा स्वागत सारे ही स्रोतियां दा। और प्रोग्राम दे विच जिहड़े सुनेहे ने ओ लगातार असी पढ़ते तो जा रहे हैं पर इदा लग रहा है कि जिन्ने पढ़ रहे हैं होर दुगने मैनू दिखते जा रहे हैं साड़ी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो लो फिर कोशिश करिए कि ज़्यादा तो ज़्यादा नाम बोले जा। जादला टाउन SBS नगर तो विनोद संधू, कमल संधू, रितेश आकांक्षा और भरत भूषण संधु ये पहुँचे ने जी और लिख रहे हैं कि सानू प्रोग्राम बहुत वधिया लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी। और सैक्टर VA चंडीगढ़ तो निश्चल ऋषि, संजू ऋषि, सौरव, कृतिका, अमरजीत, नीलम, राहुल, ऋषिका ते लाडो ऋषि। लो जी चंडीगढ़ वाले साथी ये बिल्कुल नहीं भुलते, नाल लैके आते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडे सारयां दा प्रोग्राम च शिरकत कीती। अगले सुनेहे नाल हाजिर ने जी चक 15 PS जिला श्री गंगानगर राजस्थान तो सरबजीत सिंह जोसन, सरबजीत कौर जोसन, गुरमन्नत मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया तो आदर्शपाल सिंह जोसन ते वैंकूवर कनेडा तो रॉबिन सिंह। लो सारिया नू इकट्ठा कर लिया जी, राजस्थान, ऑस्ट्रेलिया, कनेडा तीनों साडे प्रोग्राम दे विच हाजिर हो गए ने जी। बहुत ही वधिया लगता है, शुक्रिया। अगले सुनेहे नाल पहुँचे ने शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र तो संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या ते सविता भाकरे, जॉन डिकिस्ट्रो, रोजी पर्ल ते विलिस जनकपुरी सहारनपुर तो पहुँचे ने। करणवीर सिंह पॉल, सारे ही पॉल परिवार पहुँचा सराभा नगर जलंधर तो, शुक्रिया जी। और अगले सुनेहे नाल हाजिर ने सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम, अदीब हसन, गांव कुम्हारहेड़ा सहारनपुर तो पहुँचे ने जी। मेन बाज़ार शेरपुर थाना जिला संगरूर तो मिंटू सप्पल, इंजीनियर अमनजोत सिंह, इंजीनियर रमनजोत सिंह सप्पल, पिंड शाहपुर जाजन तहसील डेरा बाबा नानक, राजवंत सिंह रंधावा, निशान सिंह फौजी, अमरीक पेंटर ये भी पहुंचे ने। सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक अनारकली बाजार जगराओं तो पहुंचे ने। गांव बांडीवाला फाजिलका पंजाब तो क्रियांश बगड़िया, योगेश ओम, बेबी गरिमा, रजत ते मनीष चौधरी ये भी पहुंचे ने जी। दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब तो हाजिर ने जमानिया गाजीपुर यूपी तो सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक, स्वाति गमहरिया जमशेदपुर तो बिपिन, स्वाति देव कुमार ते आर्य कुमार जायसवाल ये भी पहुंच गए ने। जलालाबाद पच्छमी तो सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी ते निमित आहूजा ये भी हाजिर ने। लो जी अगला सुनेहा साढ़े तक पहुँचया सी पर डिलीट कर दिता इन्होंने। क्यों डिलीट कर दिता भी, यदा कारण भी दसो। लेकिन इन्हों का पिछले वार का जोड़ा सुनेहा है वह मेरे को कंप्यूटर स्क्रीन पर शो हो रहा है तो मैं इन्हों नाम जरूर बोलेंगी, तुम चाहे डिलीट कर दौ। मलोट तो कुलवंत गिल, जसवंत गिल, रमन गिल, बलजीत गिल,

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਰਮਾ। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरूआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जनकल्याण के लिए समर्पित है। प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय ने उनके और उनकी कंपनियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर धन शोधन और 100 करोड़ रुपए से अधिक के कथित जीएसटी धोखाधड़ी तथा फर्जी मोबाइल फोन बिक्री का पर्दाफाश किया है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने आगामी श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन

0: के पुलिस महानिरीक्षक भीमसेन तूती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए $1,00,000 अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। अमरीका में भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। H-1B वीजा के जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि धरती आबा का जीवन साहस, आत्मसम्मान और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक था। श्री शाह ने कहा कि आज भी बिरसा मुंडा का धर्मांतरण के विरुद्ध संघर्ष और आदिवासी गौरव के प्रति उनका समर्पण लाखों देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मुकाबला श्रीलंका में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 26वें ओवर में 3 विकेट पर 112 रन बना लिए हैं। कप्तान तिलक वर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली बढ़त देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 114 अंक बढ़कर 73,668 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश है परिवारिक प्रोग्राम वसदे वेड़े।

0: नमस्कार।
1: प्रोग्राम वसदे वेड़े लेके हरप्रीत हाजिर है जी।
0: जी गुरप्रीत भी हाजिर है। प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, अदाब करो कबूल। और जदों असी प्रोग्राम वसदे वेड़े दा आगाज़ करदे हां, शुरुआत करदे हां, ते हमेशा ज़हन दे विच बहुत सारियां गल्लां बातां घूम रही हुंदियां ने, लेकिन वो सारी बुनाई दे विचों सानू एक विशा जिहड़ा है वह तुहाडे सारियां दे नाल जरूर ते जरूर सांझ जिहड़ा है उस दे बारे पाउणी पैंदी है।
1: बिल्कुल जी, और एक सांझ असी सारियां ने पा लई है गर्मी दे नाल।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मौसम जिहड़ा है वह जदों बदलदा है ते बहुत सारे रुख सानू दिखाउंदा है, खास करके बहुत सारे रूप अपने दिखाउंदा है। सो जिवें तुसीं कहा हरप्रीत, बहुत वधिया कि साडी गर्मी दे नाल सांझ जे पै जाए तो सच्ची वधिया।
1: देखो गुरप्रीत, हर चीज़ सुखाली उदों हुंदी है जदों असी मन दे विच ओह एक्सेप्टेंस कर देने
0: जी। बिल्कुल,
1: जदों असी कहने कि हाँ जी हुण कोई नहीं, हुण जो जिद्दा मौसम है असी ओहदे अकॉर्डिंगली अपने आप नूं जदों ढाल लैने आ ते फिर थोड़ी सैटिस्फैक्शन हो जाती है, नहीं तो बंदा कभी सैटिस्फाई होए ही ना।
0: बिल्कुल, असी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाने, निराश हताश हो जाने, खास करके सुहाणियाँ जदों घरां तो बाहर बच्चों नूं कढ़दियां ने बड़ियां परेशान हुंदियां ने कि डिहाइड्रेशन ना हो जाए, धुप ना लग जाए। पर जदों लमेरी उम्र की गल करते हैं तो उदों खास करके यहोजियां बहुत सारिया सर्विसिज़ ने, यहोजे बहुत सारे किते ने, यहोजे बहुत सारे काम ने जदों उन्होंने उन्हां कामियां नूं 8-8 घंटे, 6-6 घंटे, 10-10 घंटे बाहर धुप्प च ही रहना पैंदा है ते वो अगले दिन तैयार बर तैयार अपनी ड्यूटी दे विच उसे जज्बे नाल दोबारा आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पता हुंदा परिवार जिहड़ा पालना है। सो किते ना किते इस चीज़ नूं असीं लिंक कर सकते हैं बचपन दे विच जिहड़ा है, खास करके उन्हां दी तैयारी, जिवें असीं कहिंदे ना, तुसीं बहुत सोहणी गल कही है कि सांझ पाउणी जिहड़ी जरूरी है
1: गर्मी दे नाल। और बच्चियां नूं हुण वेला हैगा, इस वेले बच्चे भी घर ने ते थोड़ा जिहा जिहनूं कहिंदे कि सवेरे जल्दी उठण दी तांग ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੁਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਜਾਓ ਬੇਟਾ ਸੋ ਜਾਓ, ਸੁਬਹਾ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ।

0: सावधान, अजेही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट ले रुको ते सोचो, पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
1: हाँ जी गुरप्रीत, गीत भी सुन लिया ते ब्रेक भी ले ली, ते ब्रेक तो बाद एक बार फिर हाजिर रहा प्रोग्राम वसदे बड़े लैके।
2: जी बिल्कुल, और जो प्रोग्राम वसदे बड़े की गल करते हैं तो वक्रे वक्रे सिलसिले असी सारे लैके आए हैं, पूरा हफ्ता ही चलते हैं सिलसिले। लेकिन जो असी मंगलवार की गल करते हैं तो असी उडारियों के जरिए सशक्त महिला के नाल गलबात करते हैं, और विषय जड़े ने वक् वक् हो सकते हैं। जो असी विषयों की गल करते हैं तो वह विषय जड़े ने वो तुहाड़ी ही जिंदगी दे नाल संबंधित होंगे ने, ता कि किसी तरीके दे नाल जागरूकता जड़ी वह पैदा की जा सके।
1: जी, तो अज उडारियों तहत असी गल कर लगे निधि बेरी जी दे नाल।
2: जी बिल्कुल, और जो ये गलबात सुनांगे असी सारे तो उस तो बाद जरूर तो जरूर चानना पावांगे कि केड़ियां केड़ियां चीज़ां दा इन्होंने जिक्र किया। सो आओ सारे रल मिल के सुनदे आं उडारियों के तहत गलबात की हुई निधि बेरी जी दे नाल।
3: उडारियां प्रोग्राम लैके असं एक बार फिर हाजिर हाँ, तो अज इस प्रोग्राम दे विच तुहाडी मुलाकात करवाउण जा रहे हैं निधि बेरी हुणां दे नाल, जो कि डांस नाल काफ़ी सालों तो जुड़े हुए ने, फिटनेस दे नाल योगा दे नाल जुड़े हुए ने, अज साडे नाल प्रोग्राम च मौजूद ने। निधि जी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च।
4: आकाशवाणी सुन रहे सारे स्रोतियों नूं मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल।
3: जी निधि जी, सब तो पहले तो यही जानना चाहवांगे कि तुसी डांस दे नाल किवें जुड़े, किवें जुड़ना होया, किवें मन दे विच शौक पैदा होया, कदों तो जुड़े हुए हो?
4: डांस तो मैं 2002 तो जुड़ी हुई हाँ
3: जी।
4: हाँ जी, मैं स्टडी ही बेसिकली मैं मेरी मास्टर्स ही कथक विच है।
3: ठीक है।
4: हाँ जी
3: जी, तो डांस किस फॉर्म दे नाल तुसी कथक नाल जुड़े?
4: कथक नाल जुड़ी हुई हाँ।
3: ठीक है जी। वैसे बहुत घट लड़कियों के मन में यह विचार आता है कि डांस के स्टडी की जाए।
4: नहीं, यह बहुत जरूरी है, जिदा असी सारे सब्जेक्ट मैथ्स करते हैं तो वह भी स्टडी जरूरी है, इदा डांस लिए भी स्टडी बहुत, एजुकेशन बहुत जरूरी है।
3: जी
4: हाँ जी,
3: किवें ख्याल आया मन के कि मैं डांस के ही अपना प्रोफेशन बना या अगे जाना या इस पढ़ाई करनी है?
4: एक्चुअली एक बार कोई इंसीडेंट होया सीगा, मेरे वड्डे ब्रदर
3: जी
4: वो एक्सपायर हो गए सीगे, तो मैं वैसे बेसिकली MBA करनी सी, तो उस टाइम सिचुएशन एवें दी सी कि मैं अपना पक्ष रख नहीं पाई फैमिली दे अगे, तो जो नियर बाय कॉलेजेस सिगे उन्हों दा कार एक्सीडेंट विच उन्हों दी डैथ हुई सी, तो नियर बाय इत्थे PG कॉलेज सिगा तो उत्थे ही मैं एडमिशन ले ली।
3: जी
4: हाँ जी, फिर मैनू मेरे टीचर्स का साथ बहुत अच्छा मिलिया, और उस टाइम ते जो सिचुएशन मैं फेस कर रही सी लाइक मैं बहुत ज़्यादा टेंशन विच सीगी, या कह लो कि मूड स्विंग्स रहिंदे सी क्योंकि ब्रदर दा जाना बहुत वड्डा झटका हुंदा फैमिली लई।
3: बिल्कुल।
4: तो ते मेरे नाल ओ जो डांस विच मैं आई तो मैनू काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलिया।
3: जी
4: हाँ जी, तो मैनू मतलब कि हैप्पीनैस मिलती रही, मेरे टीचर्स का साथ मैनू बहुत वधिया मिलिया जड़े मैनू अगे तक लैके आए।
3: तुसी दस्या कि तुसी सब्जेक्ट तो कोई होर लेना चाहुंदे सी पर स्थिति वशता नू इस फील्ड दे विच आउणा पिया, बड़ा मुश्किल हुंदा है कि जो अचानक चीज़ तुहाडे सामने आ जावे ते तुसी उस दे विच इनवॉल्व होना होवे, उस दे विच अपना इंटरस्ट दिखाउणा होवे, बेस्ट परफॉर्म करना होवे। तुसी दस्या कि टीचर्स दा साथ भी काफ़ी रहा, तो किवें इस विषय दे विच ज़्यादा डुब्बे, तुसी किवें इस नू अपना फेवरेट बना लिया?
4: मैम क्योंकि एक तो टीचर का साथ सीगा
3: जी,
4: उतो दे जो डांस करते सी ना मैनू परमात्मा नाल डायरेक्ट जिवें एक
3: हाँ
4: जी कनैक्शन फील हुंदा सीगा, और मैनू काफ़ी प्रेज मिली, कॉलेज ने मैनू बहुत सपोर्ट किया, मैनू अगे तक लैके गए ने। मैं काफ़ी थिएटर विच पार्टिसिपेट किया, माइम्स कीतियां, गिद्धा किया, लाइक एंदे विच ही मेरा बहुत ऑक्यूपाइड हो गई ते मैं बहुत इंट्रस्ट नाल किया है सारिया चीज़ां नू।
3: बिल्कुल जी, वैसे कहिंदे भी ने कि ये जो कला दियाँ विधा हुंदियां ने सारियां, ये सानू साडे जज्बात प्रगट करन दा मौका दिंदियां ने, ते शायद तानू रिलीफ भी फील होया।
4: बिल्कुल, बहुत रिलीफ फील होया, नाले आ डेस्टिनेशन सी मैम है ना, डेस्टिनी नू कोई भी रोक नहीं पाया, डेस्टिनी सी कि मैं मास्टर्स कथक विच करनी है, ते अग्गे मैनू फैमिली ने कह लो सपोर्ट नहीं किया पहले स्टार्टिंग विच, पर बाद विच जदों सपोर्ट मिलिया ते बहुत अच्छा निकलिया।
3: बहुत वधिया गल है जी, मतलब कि जिंदगी तुहानू जिस रूप दे विच मिले उस नू स्वीकार करो,
4: बिल्कुल,
3: ते उस दे जरिए अगे वधो, अपनी मंजिल हासिल करो।
4: हाँ जी,
3: कथक दे विच तुसी अपनी स्टडी कंप्लीट कीती, उस तों बाद फिर तुसी इस नू एज अ करियर किवें अपनाया?
4: कथक विच जदों मैम मैं स्टडी कर ली, आफ्टर दैट मेरी शादी हो गई, ब्याह हो गया मेरा, उस तो बाद ना 3 साल बाद मैं अपनी फैमिली कंप्लीट की, मेरे को स्पेस सीगी ते मैं अपनी फैमिली नू कहा कि नहीं मैनू क्लासेस स्टार्ट कर लैन दो, अदरवाइज साइड बाय साइड मैं कॉलेज तो बहुत कॉल आ रहे सी लेक्चरर ली, हाँ जी टीचिंग ली, बट मैं उन्हों मेरे फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया कि तुसी जॉब करनी है, बट मेरे को एक हॉल सीगा घर विच, मैं उत्थे ही स्टार्टअप किया एक बच्चे तो, अज मेरे को 200+ बच्चे ने जड़े मैं सीख रहे ने डांस।
3: बहुत अच्छी गल है जी, शुरू शुरू

0: मैं हूँ भी डाइट चार्ट्स भी लोग मेरे को लेंदे, मैं डाइटिशियन भी हाँ, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट भी हाँ,
1: जी
0: बट स्टिल मैनू अपनी सेहत का भी खूब ध्यान रखना पैंदा वै। जे
1: हम्म,
0: मैं 2-3 दिन कहते ना चीट मिल ले लो तो बैलेंस हो जाएगा, इदा नहीं है। मैं चीट बहुत घट करती हाँ, जे चीट करती भी हाँ तो मैं अपने पोर्शन का पता है कि मैं किन्ना कु घट खाना वै।
1: जी ये बहुत वधिया गल कीती तुसी, क्योंकि अजकल बहुत ट्रेंड है कि तुसी चीट मील लै लो ते तुसी उस दे नाल अपना जो मन कर रहा है खा सकते हो। पर कई बार इंज हुंदा है कि असी इन्ना चीट मील कर लैंदे हां कि पूरे हफ्ते दी जो साडी मेहनत है वो बेकार चली जांदी।
0: बिल्कुल जी, जीरो हो जाती मेहनत। हाँ जी
1: तुसी निधि जी गल कीती सी कि तुहाडे कोल सिखे हुए जो स्टूडेंट्स ने वो सैटल हो चुके ने,
0: हाँ जी
1: ते बड़ा लंबा सफर है तुहाडा ये क्लासेस दा, उन्हां स्टूडेंट्स दे बारे कुछ दसो कित्थे कित्थे सैटल हो चुके
0: मैम,
1: ने।
0: रीसेंट हूँ आ रहा है इंडियाज़ बेस्ट डांसर सीजन 5, उन मेरी स्टूडेंट है, मेरी गुरु शिष्य परंपरा चुने मेरे नाल सीख्या वै गीतांजलि। हुण कल ही टेलीकास्ट आया बेस्ट परफॉर्मर इस वीक, जड़ी ट्रॉफी है इंडियाज़ बेस्ट डांसर दी उहदे कोल है,
1: जी
0: 80 out of 80 मार्क्स है उहदे।
1: बहुत वधिया गल है।
0: हाँ जी
1: ते डांस नू एज ए करियर तुसी किवें देखते हो?
0: बहुत वधिया,
1: जी
0: इहदा बहुत अच्छा करियर है। जे तुहानू इंट्रस्ट है, एक तां देखो पैशन है, उतो इनकम है।
1: जी
0: हाँ जी
1: बिल्कुल, हाँ, क्योंकि लोग फिटनेस फ्रीक भी हो गए हैं
0: हाँ
1: ते
0: जी
1: असी देखते हाँ कि जिम दे विच भी योगा, डांस, जुम्बा बहुत सारी यहो जी एक्सरसाइज ने जो तुसी करते हो, तो उसके ट्रेनर की लोड़ तो होंगी है।
0: मैम, ट्रेनर वही मैं, मेरा नेक्स्ट टॉपिक यही सी थोड़े नाल रिलेट करना कि एदे लिए भी ना एजुकेशन लेनी बहुत जरूरी है।
1: जी
0: जड़े सीखन जा रहे ने उन्हां नू भी हक है पूरा अपने इंस्ट्रक्टर नू पुछन दा कि तू इस फील्ड विच कीता की होया, तू माहिर हैगा मैं इस फील्ड विच के नहीं है।
1: जी
0: जड़ा करान वाला है उन्हों भी यह सोचना चाहिए कि तुहानू कोई अपना बॉडी दे रहा है, पूरा शरीर दे रहा है। जे
1: जी
0: किसी नू सर्वाइकल है, तुसी सर्वाइकल नाल रिलेटेड एक्सरसाइजेस कराओ, उन्हों गलत दिशा ना दिखाओ। एजुकेशन मस्ट है।
1: बहुत वधिया गल है जी, क्योंकि जदों असीं जाते हाँ सीखण या फिर एक्सरसाइज करन तां सानूं एक ट्रेनर ही सारे नूं सेम एक्सरसाइज करा रहे हुंदे आ।
0: पर मैम ऐदा नहीं हुंदा।
1: जी
0: हाँ जी कराना पैंदा। जे मेरे कोल एक बैच है हुण इवनिंग दा, जिवें 6:30 to 7:30, उन दे विच मेरे को 60+ भी फीमेल है ते एक मेरे को स्कूल गोइंग भी बच्चा है उन दे विच।
1: जी
0: ए बैलेंस करना तुहानू आना चाहिए। तुसी एक्सपर्ट ही नहीं हो फिर तुसी की करा पाओगे? फिर तो तुसी सारे नूं ही जंपिंग जैक्स करा के या रनिंग करा के भेज दोगे।
1: बिल्कुल
0: ऐदां नहीं हुंदा।
1: जी, ये साडा भी फर्ज़ बनता है कि असी ट्रेनर नूं दसीए कि जेकर सानूं कोई फिजिकल प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत आ रही है एक्सरसाइज करन दे विच तां असी ट्रेनर नूं दस सकते हैं। अच्छा
0: बिल्कुल
1: निधि जी, तुसी एडवांस स्टडी भी कर रहे हो अलग अलग फील्ड्स दे विच, PhD कर रहे हो, उस दे
0: हाँ
1: बारे
0: जी
1: भी दसो कुछ।
0: मैं PhD कर रही हाँ। मेरा मेन जो PhD दा मुद्दा वह वो यही है कि मानसिक जड़ी अजकल कमजोरियां चल रही हैं ना बच्चों च या फीमेल्स या मेल्स, उन्हों आप योगा नाल ते डांस नाल किदा ठीक कर सकते हैं। हाँ जी
1: जी, ते तुसी अपनी इस रिसर्च चो कुछ साढ़े सुनने वालों नू भी फायदा पहुंचाओ, कुछ साझा करो कुछ टिप्स।
0: टिप्स मैम इदा वह कि मैं अपने रिलेट ही करूँगी। मेरे को
1: जी
0: स्टूडेंट्स काफ़ी आते हैं जड़े मानसिक तौर पर जिन्हों नू ब्रेन फॉग अजकल कहते हैं, वो वाकई बहुत फैल गया ड्यू टू मोबाइल कह लो, ड्यू टू लैक ऑफ
1: ब्रेन फॉग में थोड़ा डिफाइन करना चाहूंगी।
0: मैम जिदा कोई गल सुनदा सुनदा ना ध्यान उधर हो जाता, यह ब्रेन फॉग है।
1: जी
0: हाँ जी वो देख तो अड़े नाल रहा बच्चा या कोई भी पर्सन, बट उदा ध्यान थोड़े वाल नहीं है, एकदम ब्लैंक हो जाते बच्चे।
1: जी
0: तो मेरा मेन यही है
1: क्यों
0: मकसद
1: होता है इस तरह?
0: मैं मोबाइल
1: जी
0: मोबाइल है या रील्स कह लो, अनलिमिटेड तुसी स्क्रॉल डाउन करी जाते हो तो वो थानू ब्रेन नू हार्म ही पहुंचाता वै इस टाइम पे,
1: मतलब कि ताड़ी जो ध्यान केंद्रित करने की समर्थ है वो प्रभावित हो रही है।
0: प्रभावित हो रही है। बिल्कुल हो रही है।
1: जी, ते उस लिए तुसी की सुझाव देना चाहोगे कि सानू किहो जी लाइफ स्टाइल अपनानी चाहिए है?
0: घट तो घट टाइम अपना मोबाइल ते बिताओ ते अपने टाइम दी वैल्यू समझो
1: जी
0: कि जे पढ़ाई दा टाइम है उन्हों फिक्स करो, मोबाइल दे टाइम नू फिक्स करो, खान पीन दे टाइम नू फिक्स करो, अपना लाइफस्टाइल चेंज करो बेसिकली, और अपना फिटनेस वाल भी ध्यान दो।
1: जी, ते जिहड़ियां महिलावां घर दे विच बहुत व्यस्त रहिंदियां ने उहनां कोल टाइम ही नहीं हुंदा, उहनां नूं तुसीं फिट रहिण दे लई योगा एक्सरसाइज करन दे लई किवें प्रेरित करना चाहोगे?
0: मैम अजकल तो ऑनलाइन भी काफ़ी हो गया, वैसे मैं ऑनलाइन भी क्लासेस लैनी हाँ,
1: जी
0: ते बाकी तो अजकल सब कुछ यूट्यूब ते हैगा वै, ते उन्हों फॉलोअप कर सकते, बट स्टिल अपनी प्रॉब्लम्स नाल रिलेटेड ही एक्सरसाइजेस एक्सपर्टीज को जाना बहुत जरूरी है अजकल।
1: जी
0: नहीं तो ChatGPT तो लोग कर लेंगे ने डाइट प्लान्स निकाल लेंगे ने, बट इदा नहीं है। जब तक तुम एक्सपर्टीज को नहीं जाओगे थोड़ी प्रॉब्लम का हल नहीं निकल सकता।

0: वाह जी वाह, गाना भी बहुत सोहना आपां लगा लिया और खुद ही कह रहे हैं गाना सोहना लगा लिया। देखो गुरप्रीत, जदों असीं खुद अपने काम दी खुद कॉन्फिडेंस दे नाल गल करदे आ ना,
1: जी
0: काम सिरे चढ़दा आ और उम्मीद यही कीती जांदी है कि असीं वधिया काम करांगे तां होर सानूं कॉन्फिडेंस आएगा ते अगों होर रौनकां लगणगियां, होर
1: बिल्कुल,
0: मज़ा आएगा।
1: दो चीज़ां जिहड़ियां ने, ओह इक है कि अपने अंदर सकारात्मकता भरना ते अपने आले दुआले दे विच पॉजिटिविटी सकारात्मकता जिहड़ी है लै के आउणा। इस दे नाल अपनी जिंदगी नूं बदल सकदे हां। सो जिंदगियां नूं बदलदे हां, बहुत सारियां गल्लां बातां करदे हां सारिआं दे नाल, खास करके वसदे विहड़े दे विच। आस उम्मीद करदे हां कि सारिआं दे विहड़े हसदे वसदे रहिण। हुण जिहड़ियां घड़ी दीआं सूईआं इशारा कर रहीआं ने कि सानूं विदा लैणी चाहीदी, अपने सारे ही श्रोतिआं दे कोलों चलीए फिर। हरप्रीत
0: जी
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵਿਹੜੇ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ 1 ਵਜ ਰਿਹਾ। ਲੋ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਰਮਾ। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्री स्तरीय बैठक 13 जून को होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीमसेन तूती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वत

0: नैनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिका की नाकाबंदी बमबारी से कहीं अधिक प्रभावी साबित हुई है। श्री ट्रंप ने कहा कि सीमा पार हालिया मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता आगे बढ़ रही है। आज झारखंड सहित पूरा देश महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मुकाबला श्रीलंका में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 42वें ओवर में 3 विकेट पर 202 रन बना लिए हैं। मौसम विभाग ने आज उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान तथा विदर्भ में लू की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

9 ते रात 9:15 स्पॉटलाइट। खेड संसार प्रोग्राम रात 9:30 सुनोगे। इस प्रोग्राम च अज एथलेटिक कोच द्रोणाचार्य अवार्डी सुखदेव सिंह पन्नू होरा नाल कीती गलबात सुनोगे। रात 10 दियां मुख खबरां तों बाद 10:02 ते शास्त्रीय संगीत दा प्रोग्राम सुर साधना तहत अज तुसी उस्ताद अमजद अली खान दा सरोद वादन सुनोगे राग देस विच। ते रात 10:30 सरगम प्रोग्राम दा आनंद माणोगे। डीटीएच दी पंजाबी प्रसारण सेवा दे जरिए दिने 3 तुसी सुनोगे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां ते रात 11:10 ते सौगात प्रोग्राम दा लुत्फ उठाओगे। इस तो इलावा खबरां आपो अपने समय मुताबक प्रसारित कीतियां जानगियां। परचे तहत ए सन अज रात तक प्रसारित कीते जाण वाले प्रोग्राम ते उन्हां दा प्रसारण समां। मीडिया वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज ते असीं आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दोपहर दे 1:10 होण जा रहे ने। कुछ ही पलां च तुसीं सुणोगे प्रादेशिक खबरां।

नमस्कार, ए आकाशवाणी है। हुण तुसीं गुरविंदर सिंह सहोता तो प्रादेशिक खबरां सुनो। लोक सभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि विकसित भारत का संकल्प एक राष्ट्रीय वचनबद्धता है, जिस लई देश दे हर नागरिक ते संस्था दे सहयोग की लोड़ है। श्री बिरला चंडीगढ़ विखे हरियाणा विधानसभा विच करवाई राष्ट्रमंडल संसदीय एसोसीएशन CPA इंडिया रीजन जोन 2 दी कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन कर रहे सन। उन्हां जोर दे के कहा कि इस दृष्टिकोण नूं साकार करन लई इह बहुत जरूरी है कि साडियां नीतियां, योजनावां, प्रोग्राम ते बजट प्रबंध समाज दे आखरी व्यक्ति दे जीवन विच सकारात्मक बदलाव लियाउण। उन्हां कहा कि विधायक इस टीचे नूं प्राप्त करन विच महत्वपूर्ण भूमिका निभाउंदे ने, क्योंकि उह नीतियां ते लोक भलाई पहलकदमियां राहीं अपने हलकियां विच जमीनी पद्धर ते तब्दीली लियाउण लई सब तों प्रभावशाली प्रतिनिधि ने। इनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट ED हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड नाल संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली NCR में 6 थावां ते छापेमारी कर रहा है। इस विच पंजाब के जलंधर, लुधियाना, उत्तर प्रदेश के बरेली और दिल्ली NCR के इलाके शामिल ने। डायरैक्टोरेट मुताबक तलाशी मुहिम में शामिल किए गए हाथियों में हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड नाल जुड़े व्यक्तियों और संस्थावां के रिहायशी और व्यापारक दफ्तर दोवें शामिल ने। यह मामला आम आदमी पार्टी के नेता ते पंजाब दे मंत्री संजीव अरोड़ा नाल जुड़िया होया है। ईडी ने उन्हां ते उन्हां दीआं कंपनियां खिलाफ़ वड्डे पद्धर ते मनी लॉन्ड्रिंग, 100 करोड़ रुपए तो वधी कथित GST धोखाधड़ी अते फर्जी मोबाइल फोन विक्री का पर्दाफाश किया है। आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने की खुशी में आकाशवाणी जलंधर केंद्र वालों कल शाम KL सहगल आडिटोरीयम विखे एक शास्त्री संगीत प्रोग्राम एक शाम शास्त्री संगीत के नाम करवाया गया। इस प्रोग्राम विच आकाशवाणी के सीनियर कलाकारों वालों दिल टुंबवियां पेशकारियां कीतियां गईयां, जिन्हां नूं स्रोतियां वालों खूब सराहा गया। समाजिक सुरक्षा, महिला ते बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने चंडीगढ़ विखे एक उच्च पद्धरी मीटिंग की, जिस विच नैशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन अते नैशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन तहत 2026-27 लई स्टेट एक्शन प्लान नूं अंतिम रूप देण ते केंद्रित कीता गया। डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार समाज में नशियां नूं खत्म करने लई एक व्यापक नतीजा मुखी अते बहुपक्षी रणनीति अपना रही है। मंत्री ने दस्या कि वित्तीय साल 2026-27 लई NAPDDR अधीन 42.95 करोड़ रुपए की राज कार्य योजना प्रस्तावित की गई है, जिसकी वरतों नशा रोकथाम, जागरूकता मुहिम, हुनर सिक्ख्या, सलाह सेवावान, नशा छुड़ाऊ ते पुनर्वास प्रोग्रामां लई की जाएगी। उद्योग अते वणज मंत्री अमन अरोड़ा ते बिजली मंत्री तरनप्रीत सिंह सौंद ने मोहाली के फोकल पॉइंट मुबारकपुर विखे नवें चालू किए गए 66 KV ग्रिड सब स्टेशन का उद्घाटन किया। लगभग 9.60 करोड़ रुपए की लागत नाल बनाया गया 66 KV ग्रिड सब स्टेशन मुबारकपुर, डेराबसी ते लालू के तेजी नाल वध रहे उद्योगिक अते रिहायशी खेतरां दे बिजली बुनियादी ढांचे नूं मजबूत करने लई स्थापित किया गया है।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोला की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

के स्कीपर तिलक वर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत ने पिछले 12 साल में नौजवानों, खवातीन और किसानों को बाइख्तियार बनाने में कोई कोशिश बाकी नहीं रखी है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट बंदोबस्त निजाम का आगाज करेंगे। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान की सरजनिश की है और उसे नफरत की एक फैक्ट्री करार दिया है। ब्रिक्स के वज़राए ज़राअत की 5 रोज़ा मीटिंग इंदौर में शुरू हो गई है, जिसका मकसद ज़राअत के शोबे में आलमी मामलात पर मुज़ाकरात करना है। इसके साथ

0: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2:15 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। कर्नाटक, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में लू का अनुमान। और पुरुष क्रिकेट में दांबुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने पिछले 12 वर्षों में सेवा भावना के माध्यम से शासन को नया रूप दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने आम नागरिकों के लिए पासपोर्ट जारी करने और दस्तावेजों के सत्यापन को सुगम बनाया है और नागरिकों को पूरा सहयोग प्रदान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमिपत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के सीमा पार सैन्य अभियानों की निंदा की और अफगानिस्तान में हवाई हमलों के कारण हुई मौतों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है।
2: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की

0: कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को होगी। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इससे कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट बटन दबाकर लद्दाख के मिनिमर्ग में जोजिला सुरंग के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास विस्फोट किया और इसे कश्मीर तथा लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक क्षण बताया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि ये सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर निर्मित जोजिला सुरंग पूर्ण होने पर एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त, सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, जोखिमों की समय पर पहचान और आवश्यक इलाज की सुविधा दी जाती है, ताकि माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इस योजना के तहत अब तक 7,50,00,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं। सरकार के लगातार प्रयासों के कारण भारत में मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है। 2014-16 में जहां हर 1,00,000 प्रसव पर 130 महिलाओं की मृत्यु होती थी, वह 2022-24 में घटकर 87 रह गई है। इस योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ₹75 का एक स्मारक सिक्का और ₹5 का एक विशेष डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। सरकारी ई मार्केटप्लेस जिम ने सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में जिम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी, समावेशन और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण के बल पर भारत ने ये उल्लेखनीय वृद्धि की है। श्री कुमार ने कहा कि जिम पर भाग लेने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों की संख्या 2016-17 में लगभग 2300 से बढ़कर आज लगभग 12,00,000 हो गई है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेंतुती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पश्चिम एशिया में ईरान और इसराइल के बीच तनाव कम हुआ है, प्रत्यक्ष झड़पों में भी कमी आई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: पश्चिम एशिया में पिछले कुछ दिनों से जारी ईरान इसराइल सैन्य तनाव के बाद फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील लेकिन अपेक्षाकृत शांत बनी।

0: हुई है। तनाव की शुरुआत बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसराइल की कार्रवाई से हुई। इसके बाद ईरान की ओर से उत्तरी इसराइल की दिशा में मिसाइलें दागी गईं। जवाब में इसराइल ने ईरान समर्थित ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं और गहरा गईं। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान से जुड़ा मोर्चा फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरान का कहना है कि क्षेत्र में स्थायी शांति और तनाव में कमी तभी संभव है जब गाजा और लेबनान में इसराइली सैन्य अभियान समाप्त किए जाएंगे। इस बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि स्थिति को स्थिर रखने और व्यापक समझौते की दिशा में चल रही वार्ताएं निर्णायक दौर में पहुंच रही हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि हालिया सीमा पार मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता अभी भी आगे बढ़ रही है।
2: हम एक मजबूत और प्रभावी समझौते के बेहद करीब हैं। यदि बमबारी की जाती है तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है, और ऐसा कौन चाहेगा। हमारा प्रयास है कि एक ऐसा औपचारिक समझौता हो जो सैन्य कार्रवाई से भी अधिक प्रभावी साबित हो। अब तक यह देखा गया है कि नाकाबंदी का असर बमबारी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली रहा है, इसलिए हम शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दे रहे हैं।
1: कोलंबो उच्च न्यायालय ने श्रीलंका के पूर्व उपमंत्री सरना गुणवर्धना को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया है। ये आरोप 2006 में विकास लॉटरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान किराए पर वाहन खरीदने से संबंधित हैं। ये फैसला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद मिहाइल ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करने वाले आयोग द्वारा दायर एक मामले में सुनाया है। फिलीपींस में कल दक्षिणी क्षेत्र के तट के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 37 हो गई है। भूकंप में 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि 4 लोग लापता हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। भूकंप के कारण 20,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.4% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 267 अंक बढ़कर 73,791 और निफ्टी 86 अंक बढ़कर 23,209 पर था। पूरा देश आज महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसने जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। हम बात कर रहे हैं धरती आबा यानी भगवान बिरसा मुंडा की। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों का पुरजोर विरोध किया, बल्कि समाज में फैल रहे धर्मांतरण और लाल फीताशाही के खिलाफ भी बिगुल फूंका। आज सुबह से ही रांची के कोकर समाधि स्थल और बिरसा चौक पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के तमाम मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने यहां पहुंचकर भगवान बिरसा के चरणों में माल्यार्पण किया है। रांची के अलावा उनके जन्म स्थान खूंटी के उलिहातू सहित राज्य भर के जनजातीय बहुल इलाकों में विशेष सांस्कृतिक और जागरूकता सभाएं आयोजित की जा रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ स्थानों पर भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने की आशंका है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए की टीम ने 278 रनों का लक्ष्य दिया है। ये मैच श्रीलंका के रंगिरी दाम्बुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए हैं। भारत के लिए ऋतुराज गायकवाड़ के शतक और तिलक वर्मा के

0: 150 रनों की साझेदारी ने भारत को महत्वपूर्ण भूमिका दिलाने की मदद की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्रों में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है।
2: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
1: मीडियावेयर 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज, DRM 864 किलोहर्ट्ज, FM 100.8 मेगाहर्ट्ज, FM 100.9 मेगाहर्ट्ज अते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਵਜ਼ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ ਏਅਰ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੰਗਲੀ ਧਰਤੀ, ਰੰਗਲੀ ਧਰਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਗਾਇਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਸਹਿਦੇਵ ਅਤੇ ਸਾਥੀ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਮਾਤਾ ਦੀ ਭੇਂਟ, ਸਿਮਰ ਲਓ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤ ਮਹਾਰਾਣੀ।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: सोचा विच मैं हुन फोला की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: रंगली धरती प्रोग्राम च हुणी तुसी सुरेश सहदेव ते साथियां दी आवाज़ च माता दियां भेंटां सरवण कर रहे सी। हुण अज दा ये प्रोग्राम खत्म हुंदा है। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। दिन दे 3 बज रहे ने। इस मीटर ते साडी अज दी इस सभा दे प्रोग्राम हुण खत्म हुंदे ने, पर DTH दी आकाशवाणी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 सालों दौरान देश के नौजवानों औरतों और किसानों को समर्थ बनाने लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के ही दिन साल 2024 में लगातार तीजी बार भारत के प्रधानमंत्री वजह सहु चुकी सी। इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी वालों पंजाब तो आम आदमी पार्टी के आगू संजीव अरोड़ा नाल संबंधित हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंजाब उत्तर प्रदेश और दिल्ली NCR में छापेमारी की जा रही है। अंतरराष्ट्रीय ब्रिक्स खेतीबाड़ी सम्मेलन आज तो मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि विकसित भारत का संकल्प एक राष्ट्रीय वचनबद्धता है जिस लई देश के हर नागरिक ते संस्था के सहयोग की लोड़ है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र विच पाकिस्तान की निखेधी करदिया कहा है कि पाकिस्तान धार्मिक शब्दावली की वरतों करके भारत खिलाफ नफरत फैला रहा है। कोला मंत्रालय ने कोला एक्सचेंज नियम 2026 नूं नोटिफाई कर दिता है। पंजाब के व्यापार ते सनत मंत्री अमन अरोड़ा ते बिजली मंत्री तरनप्रीत सिंह सोंध ने मोहाली के फोकल पॉइंट मुबारकपुर विखे नवे चालू किए गए 66 KV ग्रिड सबस्टेशन का उद्घाटन किया है। पंजाब के माल मुड़ वसेबा ते आफत प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने कल 33 पटवारियों नियुक्ति पत्र सौंपे। मौसम विभाग ने अज पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ ते हिमाचल प्रदेश विच लू चलन की पेशनगोई की है।

प्रोग्राम चल रहा जी चिट्ठियां मिट्टियां अपनी चिट्ठियां भेजन दे लई प्यारियां पहले फरमाइशी चिट्ठियां भेजन लई पता नोट कर लो जी साडा पता है जी प्रोग्राम चिट्ठियां मिट्ठियां मार्फत स्टेशन डायरेक्टर आकाशवाणी जलंधर पिन कोड है जी 144001 आप भी चिट्ठियां लिखो तो अपने रिश्तेदारों नूं भी नंबर दिओ ताकि साडी चिट्ठियां दा पिटारा होर ज़्यादा बढ़े ते ज़्यादा तो ज़्यादा चिट्ठियां आन ते सारियां चिट्ठियां तुहाडियां शामिल करिए अपने प्रोग्राम दे विच ते इस सफर दे विच साडे कोल होर चिट्ठियां आईयां जी आदर्श नगर मलोट तो राज शर्मा मीना शर्मा योगेश शर्मा मैंडी शर्मा सौरभ शर्मा शाइना शर्मा निवान शर्मा मुलापुर मंडी जिला लुधियाना तो कृष्ण गोपाल शर्मा राज शर्मा मनु मंजू शर्मा आशीष शर्मा बिट्टू जैन दीपक जैन पुरानी मंडी मुलापुर तो राजेश जैन अरुणा जैन अक्षम जैन गौतम जैन रसगुल्ला जैन नकीना जैन मुलापुर दाखा मंडी तो कृष्ण गोपाल शर्मा बिट्टू जैन टीटू जैन जे बी राव कोटना जैन रबड़ी जैन मौसमी जैन गगड़ हाजीपुर तो लिख रहे हैं जी मोहन लाल केहर चिंतू सम्मी संदेश गुरमीतो चंद्री ते लो जी इन्हां सारियां दी फरमाइश ते तुहानूं सुनाउण जा रहे हैं मीका सिंह दी आवाज़ च ये गीत

हर साचा सिमरह पाई, साध संग सदा सुख पाई है, हर बिसर न कबू जाई। ए फरमान साध संगत विच जाके सच्चे अकाल पुरख नू सिम

ऐसी मांग गोबिंद ते, टहल संतन की संग साधु का हर नामा जप परम गते। इस शब्द गायन कीता सी पाई गुरदयाल सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने

उत्तम संगत उत्तम होवे, गुण को तावे अवगण तो वे। इस वाक अनुसार उत्तम संगत करन दी ही हिदायत है, अर्थात गुरमुख जना दी संगत। गुरमत विच ए वी ताड़ना कीती गई है कि कुछ संगत तो गुरेज कीता जावे, अर्थात निंदकां दुखियां साखतां दी संगत ना कीती जावे। मते ए एक मनुखी जामा जो प्राप्त होया है उसनू किते विकारां दी मैल ही ना लग जावे। कबीर, साकत संग ना कीजिए,

ऐसे लोगन से क्या कहिए, जो प्रभ किए पगत तिबाहज तिनते सदा डराने रही है। इस शब्द गायन की तासी पाई निर्मल सिंह ते उनदे रागी जत्थे ने। मनुखा जन्म नू सफल करन वास्ते नौवे गुरुदेव अकाल पुरख दी सुध रखण दी हिदायत करदे हुए फरमाउंदे ने कि नता प्रति कटदी हुई इस औद नू बिरथा नहीं गवाउणा चाहीदा, उस अकाल पुरख नू चेते रखना चाहीदा है। प्राणी नारायण सुध लेह छिन छिन औद कटह निसबासर बृथा जात है देह। सरवण करदे आं भाई अमरीक सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ये शब्द।

प्राणी नारायण सुदलेह छिन छिन औद कटै निस्बासर वृथा जात है देह। इस शब्द का गायन कीता सी भाई अमरीक सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबे

0: अलसभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इसे भूमि पत्तनों के बीच एकीकृत प्रणाली कायम करने के लिए बनाया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह प्रणाली आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
1: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद्य और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
0: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। नई दिल्ली स्थित एनटीए मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए खुफिया ब्यूरो और केंद्रीय जांच ब्यूरो सहित सभी साइबर सुरक्षा संसाधनों को लगाया गया है। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा प्रस्तावित $1,00,000 के H-1B वीजा शुल्क को रद्द करते हुए इसे गैर कानूनी करार दिया है। इससे कई कुशल भारतीय पेशेवरों को फायदा होगा। पिछले साल सितंबर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा आवेदन शुल्क को लगभग 2,000 से बढ़ाकर $1,00,000 करने की घोषणा की थी। श्रीलंका के दामोला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में श्रीलंका ए ने ताज़ा समाचार मिलने तक 48 ओवर में 7 विकेट पर 268 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने ऋतुराज गायकवाड़ के 101 रन की बदौलत निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से आकाशवाणी का यह जलंधर केंद्र है। इस वेले शाम के 6:05 हो चुके हैं। आओ हुण जानते हैं अज रात तक दे बाकी रहिंदे प्रोग्रामां दा वेरवा ते उहनां दा प्रसारण समां। शाम 6:30 देहाती प्रोग्राम पेश किया जाएगा, जिस विच होणगीआं कम दीआं गल्लां। झोने की लुआई बारे जानकारी देंगे डॉक्टर सोहन सिंह वालिया। जेकर इस टॉपिक दे बाबत थोड़े कोई भी सवाल होंगे तो तुसी 0181-43-173 नंबर डायल करके अपने सवालों के जवाब डॉक्टर साहब तो ले सकते हो। शाम 7:10 ते दिल्ली तो एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। शाम 7:45 ते अंग्रेजी वार्ता पेश की जाएगी, योगा फॉर हेल्थ एंड हैप्पीनेस। वार्ताकार होंगे डॉक्टर रजनी शर्मा। रात 8:00 प्रोग्राम पेश करेंगे जिंदगी हसीन है। रात 9:15 आएगा प्रोग्राम स्पॉटलाइट साडे दिल्ली केंद्र तो। रात 9:30 खेड संसार प्रोग्राम प्रस्तुत किया जाएगा। अज के इस प्रोग्राम के

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: सत श्री अकाल पंजाबियो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वालों सहभागी न्याय ते कर न्याय लई एक इतिहासिक पहल कीती गई है, जिथे मिलेगा तुहाडे केस नूं तुरंत सम्मानजनक हल। हिस्सा बनो समाधान समारोह 2026 दा 21-22 ते 23 अगस्त नूं सुप्रीम कोर्ट विच विशेष लोक अदालत लग रही है।
2: पर की उस दे लई मैनूं दिल्ली जाना पएगा?
1: जरूरी नहीं, तुसी ऑनलाइन भी जुड़ सकते हो।
2: अप्लाई किवें करिए?
1: सुप्रीम कोर्ट दी वैबसाइट www.sei.gov.in ते गूगल फॉर्म राहीं बेनती भेजो। याद रखो, आखिरी तारीख 31 मई 2026 है। सहायता लई 011-2311-2428 ते संपर्क करो।
2: समाधान समारोह 2026 आपसी सहमत ते पक्का निपटारा।
0: सरकार दे माण मत्ते 12 साल पूरे होण ते आकाशवाणी दा समाचार सेवा विभाग 1 जून तो प्रसारित कर रहा है 21 लड़ियां दा एक विशेष प्रोग्राम। 35 मिनट दे इस प्रोग्राम दा प्रसारण हुंदा है रोजाना शाम 7:10 तो लेके 7:45 तक। इसलिए शाम 7:30 प्रसारित होने वालियां पंजाबी खबरां दा प्रसारण रोज शाम 7 किया जा रहा है। सरकार दे माण मत्ते 12 सालां दी कामयाबी दी कहानी आकाशवाणी दे समाचार सेवा विभाग दी जुबानी।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन, ये परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकते हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच। परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।
3: QR कोड नु स्कैन करो, 5000 दा कैशबैक पाओ। वाह, फायदा ही फायदा।
4: UPI पिन दाखिल करो सिर्फ पैसे भेजने लई।
5: RBI कहंदा है,
6: जानकार बनो, सुचेत रहो।
7: ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है, आ हुण सुनदे हां आकाशवाणी दा टाइटल सॉन्ग।

0: हाँ जी रुड़िया राम जी लंघ आइए जी।
1: आजू आजू आजू बल साहबू आजू बच्चे वाले आजू
0: रुड़िया राम जी जय हिंद जी।
1: जय।

0: जय जय जय जय। बाल साहब बच्चे वाले हो, की हाल चाल है तेरा?
1: चाली वाह वधिया चढ़दी कला। तुसी सुनाओ।
0: हाल चाल तगड़ा। देखो अज जिदा कहने का ना, अपने कोले बड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है,
1: जी
0: क्योंकि समा जिदा कहना कि समय की गल जिहड़ी है समय के लिहाज नाल करनी चाहिए। हमेशा ही आपां कहने आ
1: जी
0: बेवक्ता तां भोजन भी चंगा नहीं लगता,
1: सही गल
0: गल
1: है।
0: तां बहुत दूर दी गल है।
1: बिल्कुल
0: सो
1: जी
0: आ समा जिमीदारी दे विच झोने दी फसल दी जदों आपां ब्यौतबंदी दी लुआई दी गल करदे आ, बहुत सारियां गल्लां ऐसियां हुंदियां जिहड़ियां असीं करनियां है,
1: ठीक है जी
0: बहुत सारियां ऐसियां गल्लां हुंदियां जिहड़ियां असीं बिल्कुल नहीं करनियां है,
1: बिल्कुल जी
0: क्योंकि झोना आपां सारे जानदे आ बल साहब कि अपनी मुख फसल है
1: हाँ जी
0: कि नहीं। तो ये ब्यौतबंदी तो लैके ये नेपरे चढ़न तक बहुत ध्यान रखना पैंदा, पानी दी फसल है
1: जी
0: तो इस करके बहुत सारिया चीज़ा है जिन्हों तो आपने ध्यान रखनिया है।
1: हाँ जी
0: अपने नाल ने डॉक्टर सूट सिंह वालिया
1: ठीक है जी
0: स्टूडियो के इन्हों डॉक्टर साहब ने आप जी आए कहने, डॉक्टर साहब जी आए तो अज का विषय जोड़ा है झोने की लुआई के बाबत ही है कि किस्म बीजनिया है, की ढंग है, की तरीका है, की करना है की नहीं करना है, सारिया गलां बातों। ये तो अलावा सज्जन भी साढ़े ना टैलीफोन के जरिए प्रोग्राम के जुड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब पहली गल तो यही आ जाती है कि देखो बजा आप कहने कि आधार है किस्म
1: जी
0: जिहड़ियां भी यूनिवर्सिटी सिफारश करती है, क्योंकि फिर सिफारिश का किस्म कीते जाते बहुत सारिया,
1: जी
0: पर किसी माहवादी किसी स्वादी इलाके के हिसाब न भी थोड़ा जहाँ जिदा आप कहने कि पौन पानी के लिहाज में अपनी चीज़ा बदल जाए ने।
1: जी
0: किस्मां दे बाबत असीं जानना चाहांगे कि पंजाब दे विच जे आपां इलाकाई दे हिसाब नाल गल करिए
1: जी
0: कि किस्मां है जिन्हां नूं सिफारश कीता जांदा है।
1: जी ये बड़ा ही तुसी प्रमुख सवाल पूछया। जिदा पंजाब दे विच जिहड़ा हुण आपां कहीए वी झोना एक प्रमुख फसल आ साडी सौणी दी, ते इहदे विच जिहड़ियां किस्मां ने यूनिवर्सिटी वल्लों सिफारिश कीतियां होईआं उहदे च PR 113 किस्म आ, PR 114 किस्म आ, इस तों इलावा फिर PR 121, PR 122, PR 123, PR 126 तों लै के PR 133 तक किस्मां ने, 127, 28, 29, 30, 31, 32, 33, जिहड़ी PR 133 किस्म आ, इह साडी यूनिवर्सिटी वल्लों नवीं सिफारिश कीती किस्म आ, ते एक HKR 47 किस्म की भी सिफारिश की जाती है। तो जे आप देखिए भी इन्हां दे विचों जिमीदारां नूं अपने हिसाब दे नाल जिहड़ी किस्म की चोण करनी चाहीदी आ, जिहड़ी PR 126 किस्म आ इह घट टाइम लैण वाली किस्म आ, इह पानी भी घट लैंदी आ, नाल दी नाल ही आपां नूं जिहड़ी पराली की समस्या इहदा जिहड़ा कद आ उह भी छोटा, तो सानूं PR 126 नूं तरजीह देनी चाहीदी आ। जे आपां देखिए पानी वास्ते फिर आपां देखिए भी इहदे च पराली घट होगी, झाड़ लेकिन इहदा अच्छा।
0: अच्छा डॉक्टर साहब एक गल होर बड़ी अहम आ जाती है कि ताड़े वालों भी और सरकारां वालों भी ये माहरां वालों भी जोर दिता जा रहा है कि झोने की आप सीधी लुवाई करिए, क्योंकि उहदे नाल बहुत सारी चीज़ों की साडी खर्चे की बचत हुंदी है, वातावरण की, पानी की, कई तरह की बचत साडे सामने आउंदी है।
1: बिल्कुल
0: कि जदों आपां DSR च जाने उदों किस्म की कोई खास किस्म नूं तरजीह देनी चाहिए कि कोई भी किस्म की आपां चोण कर सकते हैं?
1: हाँ बिल्कुल, जिहड़ा सीधे झोने की बिजाई आ उहदे लई असीं जिहड़ियां दरमियानियां समां लैण वालियां किस्मां ने जां घट समां लैण वालियां किस्मां ने, जिहदे जिस तरह PR 126 किस्म आ उह बहुत वधिया फिट हुंदी आ, बहुत वधिया हो जांदी आ, पानी की बचत भी हुंदी आ, लेबर की बचत भी हुंदी आ, झाड़ भी साडा तकरीबन साडा बराबर ही आउंदा।
0: एक सज्जन जुड़े आ टैलीफोन ते, सति श्री अकाल जी।
2: सति श्री अकाल जी।
0: कौन साहब बोलदे हो, कित्थों बोलदे हो?
2: मैं ज्ञान सिंह बोलदा, मैं कोठे दबड़ी खन्ना तों जी।
0: की सवाल है?
2: ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਗਾ ਝੋਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜੇ।
0: 126 ਲਾਓ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਦਿੱਤਾ।
1: ਹਾਂ, PR 126 ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਆ ਜੀ,
2: ਵਧੀਆ
1: ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿਸਮ ਆ।
2: ਹਾਂਜੀ,
1: ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿਸਮ ਆ PR 126।
2: ਹਾਂਜੀ, PR 126 ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ
1: ਜੀ।
0: ਹਾਂ, ਇਹ ਲਾਓ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਬੀਜਣੀ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਠੀਕ।
1: ਹੈਲੋ,
2: ਪਰਾਲੀ ਨਿਕਲੋਗੇ ਬੱਚਾ?
0: हाँ हाँ, पराल वाले पासे भी तुहानू कहा ना, पराल भी घट बनता। बहुत बहुत शुक्रिया टैलीफोन करने। होर भी सज्जन साढ़े नाल जुड़ सकते हैं, साडा टैलीफोन नंबर है 2342-173-01-8। एक ला के अच्छा डॉक्टर साहब, आपां जिक्र कर रहे सी कि किस्मां जिहड़ियां है जिदा तुसीं कहा वी 126 किस्म है,
1: हाँ,
0: ते ओह नूं तरजीह देनी चाहिए, खास करके जदों आपां सीधी बिजाई दी तुसीं जिक्र कीता है। अच्छा हुण सीधी बिजाई दे विच इक गल जरूर है कि बहुत सारे जिमीदारां दा अलग अलग जिंदा कहिंदे हां कि मत है
1: जी,
0: क्योंकि पहली फसल कहिड़ी बीजी है, खेत के बत्तर कि किस लिहाज के नाल है, यदि कामयाबी जी है दो तीन चीज़ों से खड़ी है जो आप DSR 4 जाने।

0: पास रिकैपिटलाइज किया बैंक्स की बैलेंस शीट्स को, बैंक्स को प्रॉपर एक हेल्दी कंडीशन में लेके आए, जो आज आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्रॉफिट हाईएस्ट लेवल पे है, एनपीएस लोएस्ट लेवल पे है। उसके बाद में एक इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस चालू किया, फिर आया कोविड। कोविड का शॉक था, बहुत बड़ा शॉक था, सारी दुनिया ने झेला, भारत ने उस शॉक के दौरान भी प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण एक इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल स्टार्ट किया। उस इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल के कारण जो पहले करीब करीब 30 बिलियन डॉलर के आसपास इन्वेस्टमेंट होता था, आज 130 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है देश में। इन्वेस्टमेंट जाता है फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रा में, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा दिखाई देता है। आज हम देखें, चाहे कोई भी सेक्टर हम लें, एयरपोर्ट्स, नंबर ऑफ द एयरपोर्ट्स डबल हो गए, हाईवेज 58,000 किलोमीटर्स बने, नई रेलवे ट्रैक्स 36,000 किलोमीटर्स बनी, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 99% कंप्लीट हुआ। कंपेयर करें यूके से तो मेरे ख्याल से लेस देन 50% है। कई दूसरे देशों के कंपैरिजन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई, उसका देश में एक प्रभाव पड़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, लोगों की सुविधाएं बढ़ी, इंडस्ट्रीज को और ज्यादा ग्रो करने में मदद मिली। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक फोकस दिया इंक्लूसिव ग्रोथ। भारतीय जनता पार्टी का मूल विचारों में से एक विचार है अंत्योदय का विचार। इसमें प्रधानमंत्री जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से इस पे ध्यान दिया, और जब भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे उन्होंने जिम्मेदारी संभाली तो जनधन अकाउंट हो, महिलाओं को सम्मान देने के अधिकार के साथ जो टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन हो, पक्के घरों का निर्माण हो, हर घर नल से जल पहुंचाने का भागीरथी संकल्प हो, ये ऐसे बड़े बड़े काम हाथ में लिए और उनको डिलीवर सक्सेसफुली किया कि सबसे बड़ा इंक्लूसिव ग्रोथ का पूरे विश्व में उदाहरण है अपने पास। मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया और इनोवेशन पे फोकस किया और बहुत बड़ा सिंप्लीफिकेशन किया। तो इस तरह की वेल थॉट थ्रू स्ट्रेटजी के कारण आज भारत 6-8% के ग्रोथ ब्रैकेट में कंसिस्टेंटली रहेगा,
1: और अब जो हम कहते थे कि फ्रेजाइल 5 में है, अब वो कहीं पीछे रह गया है। क्योंकि आप रेलवे का कार्यभार काफी समय से संभाल रहे हैं और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में करीब 56 परियोजनाओं की मंजूरी दी गई, जिसमें लगभग 2,38,000 करोड़ रुपए का निवेश है। हम कहते हैं कि जब कभी भी किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, यानी कि आप 1 रुपया खर्च करते हैं तो 3 या 4 रुपये तक उसका फायदा देखने को मिलता है। रेलवे की परियोजनाओं से जो बदलाव हुआ है उसे आप किस तरीके से परिभाषित करते हैं?
0: बड़ा फंडामेंटल चेंज आया है। अगर आप 2014 से पहले देखें तो एक साल में 700-800 हजार किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन होता था, आज 6,000-7,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन साल का करके करीब करीब पूरे देश के रेलवे नेटवर्क को 99.4% इलेक्ट्रिफाई कर चुके हैं। 70,000 किलोमीटर के आसपास ट्रैक्स को अपग्रेड किया, जो पुरानी पटरियां थी, हालत बहुत खराब थी, स्लीपर्स टूटे हुए रहते थे, उन सबको रिप्लेस करके करीब 70,000 किलोमीटर को रेलवे ट्रैक्स को अपग्रेड किया। 36,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बने, 1,300 स्टेशन का पुनर्निर्माण, नव निर्माण हो रहा है। 1,300 स्टेशन में से करीब करीब 250 स्टेशन कंप्लीट हो चुके हैं, इस साल के अंत तक 500 स्टेशन कंप्लीट हो जाएंगे। 5,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण एक वर्ष में करना, माने स्विट्जरलैंड का रेलवे नेटवर्क है 5,000 किलोमीटर का, पूरा स्विट्जरलैंड के रेलवे नेटवर्क के बराबर का रेलवे नेटवर्क एक साल में ऐड करना, कई वर्षों पुराने जो प्रोजेक्ट्स पड़े थे, जिनको माने प्रधानमंत्री जी का जो प्रगति का मैकेनिज्म है, जिसमें हर महीने वो जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए होते हैं देश भर में, वो उन पे ध्यान देते हैं, उनका रिव्यू करते हैं चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट उन सबके साथ मिलके। तो प्रगति मैकेनिज्म के कारण बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आगे आए, ओवरऑल बहुत बड़ा चेंज आया। कई प्रोजेक्ट जैसे चिनाब का ब्रिज अगर आप देखते हैं, तो चिनाब के ब्रिज को तो लोगों ने एक तरीके से राइट ऑफ ही कर दिया था कि ये बन ही नहीं सकता, और बारामूला से श्रीनगर तक ही रेलवे लाइन का और जम्मू से कटरा तक ही रेलवे लाइन को करके एक तरीके से अबैंडन सा ही कर दिया था इस प्रोजेक्ट को, प्रधानमंत्री जी ने इसको कम्प्लीट किया।
1: सर, हम लोग जब प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो दुनिया भर में एक नीति अपनाई जाती है, उसको हम लोग ट्रिपल पी कहते हैं, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। हमने आपके कैबिनेट ब्रीफिंग में देखा कि जब भी आप किसी परियोजना का ऐलान करते हैं तो आप प्लैनेट और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काफी जोर देते हैं, तो क्या ये समझा जाए कि अब गवर्नमेंट ने भी जो है ट्रिपल पी को पीपल, प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी के फॉर्मूले में बदल दिया है?
0: ये आपने बहुत अच्छा नाम दिया, जरा वापस बताएं क्या कहा आपने?
1: पीपल, प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी।
0: प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा नाम दिया, जनरली पीपीपी माने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं, आपने इसे अच्छा नाम दिया है। डेफिनेटली यस, देखिए रेलवे सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस 95% लेस है कंपेयर टू द हाईवे सेक्टर, इसलिए बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट बहुत सारा हाईवे से शिफ्ट करके रेलवे की तरफ किया है, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोरिया हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, चाहे जर्मनी हो, बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट का फोकस जो आपने कहा प्लैनेट फ्रेंडली कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स में किया है, और भारत में भी इसका बेनिफिट भी साफ दिखाई देता है। माने प्रधानमंत्री जी ने आते ही जो

0: रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन का एक बहुत बड़ा संकल्प लिया, उसका रिजल्ट आज दिखाई देता है। आज वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण जो बहुत सारा मिटिगेशन उसका रेलवे के कारण हो पाया, क्योंकि इलेक्ट्रिफाइड है रेलवे पूरी और इलेक्ट्रिसिटी पूरी भारत में हम स्वयं प्रोड्यूस करते ही हैं, आत्मनिर्भर है उसमें पूरी तरह से। तो चाहे गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो या पीपल ट्रांसपोर्टेशन हो, वी आर एबल टू डू इफेक्टिवली विद इलेक्ट्रिफाइड रेलवे।
1: सर, चूंकि आपके पास एक मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, और इसमें अगर मैं एक, वैसे तो हर उपलब्धि अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन सेमीकंडक्टर एक ऐसा है, सेमीकंडक्टर मिशन के जरिए जो उपलब्धि हासिल हुई है, उससे किस तरह का बदलाव आप, चूंकि कहते हैं कि वो भी एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हम बात करें, चाहे एविएशन इंडस्ट्री की बात करें, हर इंडस्ट्री के लिए उसमें सपोर्ट जरूरी होता है, वहां पर प्रगति को आप किस तरीके से मापते हैं?
0: सेमीकंडक्टर फाउंडेशनल इंडस्ट्री है और 1960 से भारत में प्रयास चल रहा था, 1962 से भारत में प्रयास चल रहा था सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लाने का। प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सबने प्रयास किए, आखिर सफलता मिली मोदी जी को। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में प्रेजेंटेशन लेने चालू किए थे, उनका बहुत स्पष्ट था कि हमें इकोसिस्टम पूरा बनाना है, और प्रधानमंत्री जी का ये भी बहुत स्पष्ट था कि हमें 20 साल का सोचना है, हमें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नहीं सोचना है। तीसरा, उन्होंने कहा था कि बहुत ध्यान रखना कि इसमें टैलेंट डेवलपमेंट पे पूरा फोकस रहे। ये तीन चीजें उन्होंने मूल रूप से हमको गाइडेंस दी थी, इसीलिए सेमीकंडक्टर मिशन जब चालू किया, इकोसिस्टम पे फोकस दिया, केमिकल्स, गैसेस, इक्विपमेंट, ये सब के सब इसमें इंडस्ट्री के जितने इकोसिस्टम प्लेयर्स है वो ध्यान से आए। सेकेंड, टैलेंट पे बहुत फोकस किया। टैलेंट में 324 यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर मोस्ट मॉडर्न डिजाइन टूल्स में, सेमीकंडक्टर के डिजाइन टूल्स में स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। ये इसका उदाहरण है आपके सामने, देखो सिलचर, चेंबूर, इंदौर, ग्वालियर, शिवपुर, जम्मू, जालंधर, रोपड़, धनबाद, राउरकेला, मेघालय, जम्मू, कैलिकट, पूरे देश भर के स्टूडेंट्स की डिजाइन की हुई है चिप्स। ये चिप्स स्टूडेंट के डिजाइन की हुई, स्टूडेंट्स के द्वारा डिजाइन की हुई चिप्स को सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर किया और स्टूडेंट्स ने उनको वापस बोर्ड में टेस्ट करके, सर्किट में टेस्ट करके उसका यूज भी किया। हाल ही में डेवोस में मैंने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सारे लीडर्स जब बैठे थे, उनको पूछा दुनिया भर में कितनी यूनिवर्सिटीज होगी जहां पे कैडेंस, सिनॉप्सिस जैसे टूल्स को यूज, स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि हमने चिप डिजाइन की और मैन्युफैक्चर की, 20 से ज्यादा नहीं गिन पाए।
1: तो अब अगले, अगर मैं 2 वर्ष में कहूं, तो सेमीकंडक्टर में भारत की स्थिति आप कहां देखते हैं?
0: बहुत सिग्निफिकेंट जंप आया है विद इन 4 ईयर्स। जो कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड चिप्स हमारी, ये माइक्रोन के प्लांट से प्रोड्यूस की हुई, ये केन्स के प्लांट से, 28 फरवरी और ये 31 मार्च, ये माने प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किए थे ये दोनों प्लांट्स। तो मात्र 4 वर्षों में 12 प्लांट प्रोडक्शन स्टार्ट कर देना, डिजाइन का इकोसिस्टम बनना, टैलेंट का पूरा पाइपलाइन रेडी होना, और अगला जो सेमीकंडक्टर मिशन होगा इसमें हमारा फोकस रहेगा डिजाइन को नंबर 1 प्रायोरिटी देना, मशीन मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, केमिकल और गैस मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, और फैब और ATMP यूनिट्स और आएंगे। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह का एफर्ट अभी लगा है और जो सक्सेस अभी तक मिली है, उससे लगता है कि सारी दुनिया भारत को एक ट्रस्टेड पार्टनर की तरह देखती है।
1: सर, एक चीज हमने और भी देखा कि जो PLI इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक के लिए आपने किया, और उसका एक सबसे ज्यादा बड़ा फायदा हमें मोबाइल हेडसेट के मामले में देखने को मिला। एक ऐसा भी दौर था कि जब भारत में हर मोबाइल फोन की बड़ी तादाद जो है वो इम्पोर्टेड होता था या मेड इन कहीं और होता था, अब हम मेड इन इंडिया और असेंबल्ड इन इंडिया की बात करें। तो ये जो PLI स्कीम है, ये मोबाइल हैंडसेट और इलेक्ट्रॉनिक के मामले में किस तरीके से योगदान किया, वहां पर हम आगे का सफर कैसे देख रहे हैं?
0: बहुत फायदा हुआ। सबसे पहले तो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स थे उसकी मैन्युफैक्चरिंग चालू की, फिर कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग चालू हुई, और कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रिसीजन का काम होता है। ये एक क्लासिक एग्जांपल है, आप इसको देखें अगर जी, तो आपको ये एक फुल स्टील का ब्लॉक दिखेगा, राइट, इसमें कोई कहीं कट या कुछ नहीं दिखेगा। ये एक्चुअली इतना प्रिसीजन का मैन्युफैक्चरिंग है, ये एक्चुअल में इतने ज्यादा इसमें कट्स लगे हुए थे इसमें, राइट, इतना प्रिसीजन का काम था। जो सिंगल सॉलिड ब्लॉक दिखता था वो सिंगल सॉलिड ब्लॉक नहीं है। तो इस प्रिसीजन का काम जो स्टूडेंट्स सीख पाते हैं वही मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं आके, इस तरह का काम है। तो अब कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में आफ्टर द सक्सेस ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड मॉड्यूल्स, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में 75 फैक्ट्रीज ऑलरेडी अप्रूव हो गई है जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, करीब 250 फैक्ट्री होंगी, और कंपोनेंट का एक्सपोर्ट करना भी भारत ने चालू कर दिया है। प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग के मैं कई एक एग्जांपल आपको दूंगा। रेलवे का जो प्रपल्शन होता है, ट्रेन का जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है वो प्रपल्शन है, रेलवे की इलेक्ट्रॉनिक्स। लास्ट ईयर वी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग रेलवे प्रपल्शन टेक्नोलॉजी टू जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड US। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। प्रधानमंत्री जी का जो मेक इन इंडिया

0: का थ्रस्ट है, जो फोकस है, वो फोकस अब रिजल्ट दिखाने लगा है जब ऐसी कॉम्प्लेक्स चीजें भारत से एक्सपोर्ट होने लगी।
1: तो अगले, अगर मैं पीएलआई के अगले चरण की बात करूं तो उसमें हम क्या कुछ देख सकते हैं, क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं?
0: बहुत फोकस आएगा कंपोनेंट्स को यूज करके भारत में एक्स्ट्रा डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करना, डिजाइन की कैपेबिलिटीज बढ़ना, और क्वालिटी में जो भारत ने एक पहचान बनाई है उसको एक नए लेवल पे लेके जाना, सिक्स सिग्मा लेवल पे लेके जाना।
1: सर, अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिस्कशन की बात करूं तो दो ऐसे बिल हैं जो एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन के तौर पे कहे जा सकते हैं। एक जैसे आपका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन है और दूसरा जो है रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। ये दोनों कानून को लेकर के प्रतिक्रिया जैसी भी रही हो, आप इसके काफी मुखर तरीके से, आपने खासतौर पर ऑनलाइन गेमिंग की मैं बात करूं कि उस पर रियल मनी वाले ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के आपने काफी उस पर अपनी बात बहुत ही मजबूती के साथ रखा था, इन दोनों लेजिस्लेशन को आप किस तरीके से देखते हो और इनके जरिए पूरी इंडस्ट्री में किस तरह का बदलाव हुआ है वो अगर बता सकते?
0: ऑनलाइन मनी गेमिंग सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा एक अभिशाप बन के उभरा था, हजारों सुइसाइड्स, परिवार की सारी इनकम एक गेम में नष्ट हो जाना। ऑनलाइन बेटिंग, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग वॉज अ बिग बिग बिग प्रॉब्लम फॉर द सोसाइटी। इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कठोर निर्णय लिया और ऑनलाइन मनी गेमिंग को बैन किया। इसका बहुत बेनिफिट मिला है। अभी हाल ही में टाइटन इंडस्ट्रीज के सीईओ का इंटरव्यू था कि ऑनलाइन मनी गेमिंग के बैन के कारण बहुत सारा जो लोग पैसा वेस्ट कर देते थे मनी गेमिंग में, वो पैसा आज अपने परिवार के लिए अच्छे सामान खरीदने के लिए लगा रहे हैं, घर में बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, हेल्थ केयर के लिए, घर बनाने के लिए, उस सब में लग रहा है। इसी तरह से कई एग्जांपल्स है। एक इंडस्ट्री है जिसमें 30,000 लोग काम करते हैं, उनके सीईओ मुझे बता रहे थे कि महीने का पहला हफ्ता करीब करीब ऐसा होता था जिसमें व्यक्ति ने जितनी सैलरी ली वो सारी सैलरी ऑनलाइन मनी गेमिंग में लूज कर देता था, और उसके बाद में एचआर डिपार्टमेंट को फोन करके किसी तरीके से परिवार कैसे चलाए उसकी व्यवस्था में चिंता रहती थी। मतलब उनका कहना था कि उनके जान पहचान के लोगों में महीने में एक सुइसाइड होता था गेमिंग के कारण। वो सारी चीजें फिनिश हो गई। अभी हाल ही में एक जगह से प्रवास से लौटने के टाइम में इंडिगो का कर्मचारी मुझे मिला, उसने कहा कि मोदी जी को धन्यवाद देना कि ऑनलाइन मनी गेमिंग आपने बंद कर दी, कि मुझे 35,000 रुपये मिलती थी सैलरी, पूरे के पूरे 35,000 रुपये मैं गेमिंग में गंवा देता था, और अब मेरा परिवार, मेरा छोटा सा बच्चा है, उसने कहा मेरा शायद 3 या 4 साल का बच्चा है, अब परिवार हमारा खुश है।
1: लेकिन
0: इस तरह के कई एग्जांपल्स।
1: लेकिन कई बार ये भी बात कही जाती है कि वीपीएन के जरिए और उन सब के जरिए,
0: ये बात ठीक है आपकी,
1: तो आप कैसे उस पे रोक लगा?
0: ये बात ठीक है। देखो, जब भी इस तरह के कड़े कठोर कानून आते हैं तो 90% प्रॉब्लम सॉल्व होती है, लेकिन कुछ हद तक लोग गैर कानूनी तरीकों से करने का प्रयास करते हैं, चाहे किसी भी सेक्टर में ले लो, चाहे ड्रग्स का ले लो, चाहे किसी भी तरह के सेक्टर को ले लो। तो इसमें प्रयास हमारा लगातार रहता है कि इस तरह की जो इलीगल साइट्स हैं उनको बैन करने का। अब तक करीब करीब 10,000 के आसपास इलीगल साइट्स को बैन किया जा चुका है।
1: और सर, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के किस तरीके की?
0: बहुत ही वेल थॉट थ्रू बिल है ये, जिसमें 7 प्रिंसिपल्स के बेसिस पे सिटीजन्स के डिजिटल डेटा को, डिजिटल पर्सनल डेटा को प्रोटेक्शन करने का मेथड है। इंडस्ट्री के साथ बातचीत करके उसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और दुनिया भर में इस बिल के कारण भारत की एक नई पहचान भी बनी, क्योंकि जो प्रिस्क्रिप्टिव मेथड यूरोप ने लगाया उसके कारण उनका इनोवेशन फिनिश हुआ। भारत के इस बिल में इस तरह से बैलेंस आया इनोवेशन और रेगुलेशन में, जिससे कि इनोवेशन भी फ्लरिश कर सके और रेगुलेशन भी प्रॉपर लेवल पे हो सके।
1: अगर मैं आखिरी में आपसे पूछूं कि हमने शुरुआत करी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से, अगर मैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो अगले 3 से 5 सालों में हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कुछ और बदलाव देखेंगे और डिजिटल इंडिया किस तरीके से आगे बढ़ेगा, अगर उसकी रूपरेखा पेश कर सकें आप तो?
0: टेलीकॉम सेक्टर में बड़े बदलाव आने वाले हैं। टेलीकॉम सेक्टर में जो सबसे बड़ा चेंज आएगा वो चेंज आएगा रेजिडेंट AI। एक टेलीकॉम टावर करीब 2000 पैरामीटर्स लेता है जिसपे वो काम करता है एक साथ। उन पैरामीटर्स को अभी जो एल्गोरिदम्स होती है वो एल्गोरिदम्स बड़ी प्रिस्क्रिप्टिव टाइप की एल्गोरिदम्स होती हैं, किस सिचुएशन में क्या करना है उस पर डिफाइंड होती है। अगर उसमें AI लगता है हर टावर के अंदर तो सिग्निफिकेंट लेस पावर कंजम्पशन हो पाएगा, सिग्निफिकेंटली बेटर कॉल क्वालिटी हो पाएगी, और डिजिटल इंडिया के नेक्स्ट फेज में टेलीकॉम का जो रोल है वो रोल और टेलीकॉम में AI का रोल वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा।
1: लेकिन ये भी कहा जाता है कि AI बहुत सारी नौकरियां ले सकता है, तो जब हम डिजिटल इंडिया के एक्सपेंशन की बात करेंगे, AI के इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, हमारे लिए एक बड़ी चुनौती नौकरियां नहीं रहेंगी?
0: जितनी IT सेक्टर की इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ हम लगातार एंगेज्ड हैं, किस तरह से नए प्रकार के स्किल्स क्रिएट किए जाए, नए प्रकार की ट्रेनिंग क्रिएट की जाए। अभी हाल ही में NASSCOM के माध्यम से IT इंडस्ट्री ने अपना

0: या कोर्स का पूरा करिकुलम बना के दिया है जिसको AICTE के माध्यम से लागू करेंगे, जिससे कि टेक्नोलॉजिकल चेंज के कारण जब भी डिसरप्शन आता है, जब भी परिवर्तन आता है, तो उस समय में अगर इंडस्ट्री और एकेडेमिया दोनों आपस में मिल जाए तो उस चेंज को बहुत स्मूथली कर सकते हैं। तो वही प्रयास है, IT इंडस्ट्री के साथ मिलकर नए तरह के जो जॉब्स क्रिएट होंगे उन जॉब्स के लिए हमारे युवाओं को तैयार करने का प्रयास है।
1: अश्विनी वैष्णव साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सूचना और प्रसारण, रेलवे तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे पत्रकार शिशिर सिन्हा। ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत। अब सुनिए संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पराशर।
3: नमस्कार। 26 मई 2014 वो दिन था जब सिर्फ सरकार नहीं बदली थी बल्कि करोड़ों भारतवासियों की जो आकांक्षा थी, जो सपने थे, वो भी ऐसा लगा था पूरे होने की कगार पर अब आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए अब जब 12 साल पूरे हो रहे हैं तो फिर ये तो एक सवाल बनता है ना कि भाई 12 साल में इस देश में ऐसा क्या बदलाव आया कि लोग मोदी मोदी मोदी मोदी कर रहे हैं। ऐसी क्या बात हो गई कि नरेंद्र मोदी हर राज्य में विजय पताका फहराते जा रहे हैं, लहराते जा रहे हैं, और भारत जो है वो विश्व स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब अपना एक अलग मुकाम रख कर लाया है। चलिए इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज बेहद ही खास मेहमान है, और वो खास मेहमान जो कि जब नॉर्थ ईस्ट में बात होती थी ना कि कौन चेहरा है, तो एक चेहरा सबसे पहले सामने आता था किरण रिजिजू जी का, और वो अब अल्पसंख्यक मामलों के भी मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, इससे पहले कानून मंत्री रह चुके। तो एक तरीके से 2014 से लेकर अब तक का सफर इन्होंने लंबा तय किया है। बहुत बहुत स्वागत है रिजिजू जी आपका।
4: धन्यवाद।
3: और 12 साल की ये जर्नी, आप इस जर्नी को कैसे देखते हो?
4: ये जर्नी भारत का इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट किए गए थे, मंत्रिमंडल का शपथ लेने से पहले उन्होंने हम 44 लोगों को बुला करके पहला संदेश जो दिया था वो मुझे आज भी याद है। मोदी जी ने कहा था कि हम लोग सिर्फ सत्ता में कुर्सी ऑक्युपाई करने के लिए नहीं आया है, हम देश का दशा दिशा और जनता गरीब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लेने के लिए हम आए हैं। तो तब से लेकर एक एक नीति आप देखेंगे तो भारत को एक नई मोड़ पर लेकर के 2014 के बाद हमने काम शुरू किया है, और गवर्नेंस शासन करने का प्रक्रिया है उसमें बदलाव किया है। और अब तो एक आम सा बात हो गया है कि भारत सरकार कोई भी कदम उठाते हैं उसका लाभ तुरंत जनता तक मिल जाता है। नहीं तो पुराने दिनों में कांग्रेस के शासन के समय तो बातें बहुत होती थी, कई घोषणाएं भी होती थी, बजट में घोषणाएं, रेलवे बजट में नई प्रोजेक्ट का घोषणाएं, और हर समय चुनावों में तो घोषणा ही घोषणा होते थे, गरीबी हटाओ नारा लगाना, ये एक फैशन सा बन गया था उस जमाने में। लेकिन इन 12 सालों में सचमुच में जो काम हुआ है, मैं मानता हूँ कि मोदी जी का कार्यकाल है ये सचमुच में भारत को फिर से एक महान देश, और जो पुराने में भारत का एक नाम था उसको फिर से पुनर्जीवित और फिर से पुनर्स्थापित करने में कामयाब हुआ है।
3: आपने, क्योंकि रिजिजू जी गरीबों वाली बात की ना, पहले का वो स्लोगन एक याद आता है कि जब 1 रुपया भेजते थे 10 पैसे पहुंचते थे, आज 1 रुपया भेजते हैं तो कितने पैसे पहुंचते हैं?
4: आज तो जितना भेजता है उतना ही पहुंचते हैं, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री खुद ही सरेंडर हो गए थे। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और खुद ही सरेंडर करके बोल दिया कि 100 रुपया भेजता तो 15 रुपया पहुंचते हैं, 1 रुपया में 15 पैसे पहुंचते हैं। आज तो एक बटन दबाया, केंद्र सरकार के ओर से कोई भी स्कीम घोषणा करके उसको सिर्फ बटन दबाना है, DBT के माध्यम से लोगों के खाता में पहुंच जाते हैं और सारा स्कीम जो है समयबद्ध क्रियान्वित हो जाते हैं। इसलिए जो बदलाव आज देखने को मिला है, ऐसे ही सोचने से आपको पता नहीं चलेगा 12 साल पहले देश का हालत क्या था। जब कांग्रेस UPA सरकार थे तब हम भ्रष्टाचार से ग्रस्त होकर के, पॉलिसी पैरालिसिस होकर के, और

0: गरीबों को सरकार का कोई भी कार्यक्रम तुरंत कुछ भी नहीं मिलते थे। तो इतना बदलाव जो आया है इसको चंद शब्दों में कहना तो मुश्किल है, मगर इतना तो कह सकता हूँ कि जो हमारा सरकार का थीम है सेवा सुशासन और गरीब कल्याण, तो गरीबों का कल्याण तो हुआ ही है, सेवा तो हम कर ही रहे हैं और सुशासन देश को भला हो रहा है, तो हर दृष्टि से हम कामयाब हैं।
1: तो आप कह रहे हो पॉलिसी पैरालिसिस, ये जो नारा और स्लोगन चला था उस वक्त मनमोहन सिंह सरकार के समय में, आज राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज पीएम का नारा चला रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई आपने ऐसा किया तो अब कॉम्प्रोमाइज पीएम वो बोल रहे हैं।
0: कांग्रेस के समय में जो हालत था वो हमको बताने का कोई आवश्यकता ही नहीं है, देश के जिस आदमी का भी आप पूछो कांग्रेस जमाने में क्या हालत था, और कांग्रेस के खुद नेताओं से पूछो, कांग्रेस के नेता खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में तो अमेरिका उसका मास्टर थे, चिदंबरम साहब खुद होम मिनिस्टर थे तो खुद ही बताया कि पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला किया और भारत कुछ नहीं कर पाया क्योंकि अमेरिका ने वार्निंग दिया कि कुछ नहीं करना है। फिर चिदंबरम जी ने खुद भाषण दिया था पार्लियामेंट में जब हमारा सत्ता में आए, कहा कि आप डिजिटल इंडिया का बात करते हैं, गांव में गरीब लोगों को डिजिटल से क्या लेना देना है, और जो हमारा पेमेंट होता है यूपीआई के बारे में मजाक उड़ाया था कि गरीब जो सब्जी बेचते हैं सामान बेचते हैं उनका डिजिटल पेमेंट कैसे होगा,
1: वो बैंक के खाते का क्या करेंगे।
0: तो ये सारा चीज जो है वो तो कांग्रेस खुद ही कहते हैं, राजनीतिक दृष्टि पर कुछ भी आप कह लो लेकिन मालिक तो जनता है, तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज तो पूरी तरीके से कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस पार्टी ने देश को ही कॉम्प्रोमाइज करके रख दिया था। आज तो मोदी जी अपना निर्णय लेते हैं देश हित में, और देश हित में किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं, तो राजनीतिक दृष्टि से कोई अगर कह देगा तो वो तो उसके ऊपर भारी पड़ेगा, स्पेशली कांग्रेस पार्टी तो कुछ कह नहीं सकते, उन्होंने लगभग 60 वर्ष इस देश को शासन किया और देश को बहुत गरीब राष्ट्र बना दिया था, सबको मालूम है हमारा इकोनॉमी हमारा पर कैपिटा इनकम कांग्रेस के जमाने में कितने नीचे थे। अब हम इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं तो सपना देखता था उस जमाने में कि चाइना 8% 10% से ग्रोथ करते हैं, हम कब चाइना की तरह ग्रोथ करेंगे, और मोदी जी ने हमको चाइना से भी ज्यादा स्पीड में अपने इकोनॉमी का ग्रोथ पाथ को आगे लेके खड़ा कर दिया। तो ये सब देखिए इसमें तो कोई भी भारतीय फख्र होगा कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हमको मिले हैं जो भारत को एक विकसित भारत की ओर ले जा रहे हैं।
1: आपने क्योंकि चाइना की बात कही ना, तो नॉर्थ ईस्ट जहाँ से आप आते हैं वो समय और वो दौर भी हम लोग देखते थे कि जब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अपनी पहचान का संकट था, पहचान बताने में भी उनको घबराहट होती थी, दिल्ली तक आने में तो उनको बहुत समय लग जाता था, वो बदलाव भी देखा है क्या हमने?
0: बदलाव तो क्या कहेंगे, मैं ये कहूंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन पूरा परिवर्तन हो गया है, बदलाव सिर्फ इंक्रीमेंटल बदलाव नहीं है ना, ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव आया है, क्रांतिकारी बदलाव आया है, क्योंकि जो दूर दराज के इलाके हैं वो तो दिल्ली से बहुत दूर महसूस करते थे, जैसे मैं अरुणाचल प्रदेश से आता हूँ, अरुणाचल के लोग दिल्ली जाने के लिए भी सोचना पड़ता था और दिल्ली वाले भी नहीं आते थे, अगर आते तो भी मेहमान की तरह आते हैं। आजकल तो चाहे लद्दाख हो चाहे मिजोरम हो अरुणाचल प्रदेश हो, सब जगह ट्रेन से कनेक्ट हो गए हैं, एयरपोर्ट से सबको कनेक्ट किया गया है और टनल बन रहे हैं, नए नए परियोजनाएं, हाईवे कितना बन गया है, जो एक इंच हाईवे नहीं बने थे 12 साल पहले आज वहाँ चकाचक हाईवे बन गए हैं, लोग आराम से गाड़ी लेकर के आना जाना हो रहा है, गांव गांव मोबाइल टेलीफोन पहुंच गए हैं, वो भी इतना सस्ता है डेटा कि आप आराम से एक बार आपने अपना डेटा लोड कर लिया फिर आराम से बात करो, आप इंटरनेट में काम करो। उस जमाने में तो फोन करने के लिए भी कितना चिंता करता था कि उसका जो बिल आते थे, तो आजकल तो डेटा भी दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ता भारत में है मोबाइल।
1: लेकिन इसका फायदा या नुकसान, हर गांव में बच्चा कंटेंट क्रिएटर बना हुआ है,
0: वो तो विषय अलग है, उसको एक व्यवहारिक तरीके से क्या करना चाहिए वो विषय अलग है, लेकिन सुविधा सबको मिला है ये बड़ी बात है।
1: जेंजी के बारे में क्या सोच रहे हो आप, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर हम बात कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर और जेंजी खतरा लग रहा है क्या अभी?
0: देखो जेन जी का तो ये शब्द पश्चिमी देशों से उन्होंने क्रिएट किया है, हम तो अपना पारंपरिक जो मानक है हम उसी से चलते हैं, फिर भी एक टाइटल दिया गया है नए युवाओं को जो एक पर्टिकुलर वर्ग को जेन जी जो कहते हैं, वो आज 18 साल 20 साल 25 साल के लगभग उसमें ज्यादातर लोग हैं,
1: क्योंकि सबकी निगाह उन्हीं पर लगे, राहुल गांधी जेन जी से मिल रहे हैं, अखिलेश यादव जेन जी से मिल रहे हैं, सब जेन जी से।
0: राहुल गांधी जी हो या अखिलेश यादव जी हो वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, लोकतंत्र में कुछ लोग तो विरोध रहेंगे ही, एक पक्ष होते हैं एक विपक्ष होते हैं, लेकिन आप दिल से अगर नहीं जुड़ेंगे तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर आपको कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में, लगभग 50

0: 50% वर्ष एक साल में वो विदेश में रहते हैं, वहाँ वो छुट्टियाँ मनाते हैं, रिजॉर्ट में छुपके कहीं कहीं जाते हैं, कभी कभी बताते भी नहीं है। और फिर जब एक बार आएंगे देश में और फिर एक स्टेटमेंट देंगे, मोदी जी को गाली देते हैं, फिर विदेश गायब हो जाते हैं, फिर वापस आएंगे मोदी जी को फिर दूसरा गाली देंगे, फिर विदेश चले जाते हैं। तो ये जो पार्ट टाइम वाला राजनीति है उससे आप लोगों का दिल नहीं जीत सकते हैं और लोगों के अंदर आप नहीं घुस सकते हैं। हमारा तो नेता और हमारा पार्टी 24 घंटे हम तो देश के लिए और देश के जनता के बीच में हम रहते हैं।
1: ये विदेश वाला जो है, विदेश जाने में क्या बुराई है?
0: वो तो अच्छा है, अगर वो विदेश जाते रहे तो कांग्रेस का नैया जो है डूबते रहेंगे। राजनीतिक तौर पर हमको कुछ नहीं कहना है, अगर राहुल गांधी को राजनीति में कोई रुचि नहीं है और विदेश में ही उसका दिल है और अपने विदेशी दोस्तों के साथ ही अगर वहाँ दिल बहलाने के लिए विदेश में रहता है, हमारा क्या आपत्ति है? हम तो इसलिए कह रहे हैं कि वो कभी कभी वापस आते हैं भारत में, अपने देश में आ करके फिर गाली देते हैं, फिर गायब हो जाते हैं।

0: उससे आप लोगों का दिल नहीं जीत सकते हैं और लोगों के अंदर आप नहीं घुस सकते हैं। हमारा तो नेता और हमारा पार्टी 24 घंटे हम तो देश के लिए और देश के जनता के बीच में हम रहते हैं।
1: ये विदेश वाला जो है, विदेश जाने में क्या बुराई है?
0: वो तो अच्छा है, अगर वो विदेश जाते रहे तो कांग्रेस का नैया जो है डूबते रहेंगे। राजनीतिक तौर पर हमको कुछ नहीं कहना है, अगर राहुल गांधी को राजनीति में कोई रुचि नहीं है और विदेश में ही उसका दिल है और अपने विदेशी दोस्तों के साथ ही अगर वहाँ दिल बहलाने के लिए विदेश में रहता है, हमारा क्या आपत्ति है? हम तो इसलिए कह रहे हैं कि वो कभी कभी वापस आते हैं भारत में, अपने देश में आ करके फिर गाली देते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, चुनाव के बीच में भी वो विदेश चले जाते हैं, तो नुकसान तो कांग्रेस का है, हमारा क्या नुकसान है?
1: अब वो कांग्रेस पार्टी कहती है भाई सरकार आपकी, आप पता करो विदेश में वो क्या करते हैं क्या नहीं करते।
0: देखो किसी का जिंदगी में कौन क्या खाता है पीता है, कहाँ रहते हैं, किसके साथ में वो घूम रहे हैं, इतना हमारा रुचि नहीं है। हमारा सिर्फ इतना तक सीमित ध्यान जाता है कि वो देश के विरोधी ताकतों के साथ में मिलना जुलना होते रहते हैं विदेश में, इससे हम आपत्ति है, हम उसको आपत्ति करते हैं।
1: आपको लगता है कि ये जो विदेश विदेश वाला राहुल गांधी का है, उसके बाद वो आते हैं पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में फिर वो एक एजेंडा बोलते हैं, कहीं ना कहीं वही एजेंडा वो लेकर के आते हैं क्या?
0: जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो झलकते ही है, क्योंकि देश को कोसते हैं, देश के प्रधानमंत्री को कोसते हैं, तो उससे पता चलता है कि वो देश के विरुद्ध जो लोग काम करते हैं उनसे काफी इन्फ्लुएंस हुए हैं। उदाहरण के तौर पर जो राहुल गांधी जी कहते हैं पार्लियामेंट में वो सेम चीज पाकिस्तान कहते हैं, और जो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल और इन जैसे लोग जो भी नैरेटिव चलाते हैं उसके तालियां पाकिस्तान में बजता है, तो ये तो कहीं ना कहीं एक तरीके से तो जुड़े हुए हैं। अब मैं इसको किस तरीके से समझाऊं देशवासियों को कि जो विपक्ष है वो भी तो देश के लिए सोचना चाहिए ना। विपक्ष का काम ये नहीं है कि देश के खिलाफ काम करे, वो सरकार को गाली दे सकते हैं, सरकार के खिलाफ उनका बोलने का अधिकार है, और लोकतंत्र में सरकार के खिलाफ मजबूती से अगर विपक्ष खड़ा रह करके निगरानी रखेंगे, कोई करप्शन हुआ है क्या, कहीं कोई नीति में भूल चूक हुआ है क्या, अगर उसमें विपक्ष हमला करते हैं तो ये तो स्वागत है, लेकिन कोविड का समय, ये इमरजेंसी समय है, तब भी प्रधानमंत्री को गाली देंगे, देश के खिलाफ काम करेंगे। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, देश गर्व है हमारा सेनाओं के, जो देश के प्रति उन्होंने जो बल दिखाया है उसको भी विरोध करते हैं, सवाल उठाते हैं, और अभी ईरान अमेरिका इसराइल का लड़ाई के चलते तेल गैस आने में कष्ट हो रहे हैं, ये तो एक तरीके से एक आपातकालीन टाइप का सिचुएशन हरमूज में पैदा हो गया है मिडिल ईस्ट में, तो उससे हमको दिक्कत हो रहे हैं, तो ऐसा में तो देश के साथ खड़ा होना चाहिए, ऐसा में भी देश का खिलाफ बोलते रहते हैं और मोदी जी का खिलाफ बोलते हैं, तो मेरा ये कहना है कि आमतौर पर विरोध जो है सरकार के खिलाफ आप जितना कर सकता है कर सकते हैं, उसमें लोकतंत्र में कोई रुकावट नहीं है, लेकिन जब इमरजेंसी सिचुएशन होता है, जब एक विशेष परिस्थिति होता है, ऐसे समय में सबको एक साथ खड़ा होना होता है। जैसे जब 1962 में लड़ाई हुआ चीन के साथ, तो पूरा देश एकजुट खड़ा हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी में टूट हुआ, एक ग्रुप जो है चीन का समर्थन में आया, वो कम्युनिस्ट भाग हो गया। 1965 हो, 71 हो, या कारगिल के समय में भी हो, हर समय इस तरीके के जब विशेष परिस्थिति आते हैं, जब देश किसी से लड़ रहे हैं, दुश्मनों के साथ में देश मुकाबला कर रहे हैं, ऐसा समय में पूरा देश एकजुट खड़ा रहना चाहिए, ये तो सब मानते हैं, लेकिन पहली बार मैंने देखा है ऐसा विपक्ष आज का दिन में पैदा हो गया है कि देश किसी विपत्ति से जूझने के लिए, कोई आपातकाल स्थिति को नियंत्रण करने के लिए जब काम कर रहे हैं, ऐसे समय में सरकार के खिलाफ देश के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, इससे मैं बहुत दुखी हूँ।
1: संसद में आपको लगता है ये जो बर्ताव है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है इतने समय में?
0: देखिए राहुल गांधी जी को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, मुझे लगता है, मैं इतने सालों से उसको देख रहा हूँ, पहले तो मैंने सोचा था कि वो हल्के फुल्के से इधर उधर घूमते रहते हैं, अनाप शनाप बात करते रहते हैं, लेकिन जब वो नेता प्रतिपक्ष बने तो मैंने सोचा कि वो नियंत्रित होंगे, लेकिन और बिगड़ गया, नेता प्रतिपक्ष होने के बाद तो और भी उसका भाषा पूरा बिगड़ गया है, अब तो पार्लियामेंट में जब बोलते हैं तो नियम के बाहर बोलते हैं और गाला गाली पे उतर जाते हैं, दिन भर नारा लगाते रहते हैं अपना एमपीओ को, जो पार्लियामेंट हाउस के बाहर गेट में खड़ा करके वही दिन भर वहां तमाशा कराते रहते हैं, तो एमपी इसके लिए नहीं आया, एक नॉर्मलसी कर दिया, अब कांग्रेस के एमपी लोग भी ये सोचने लग गया कि वो तो पार्लियामेंट में इसलिए चुन के आए कि वो इस तरह का हरकतें करना है, उसी को अपना दायित्व तो मान लिया है, संसद के अंदर में बोलना, अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बोलना और सरकार का नीति में खामियां है तो उसको उजागर कर

0: ना, और फिर जहां जरूरत है सुझाव भी दे सकते हैं या आप उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन वो संसद में बोलना, वहां प्रदर्शन करना, ये सारा चीज जो है लोग देख रहे हैं ना, लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस का हरकत कैसे है।
1: मोदी जी ने जो कोई एक बात आपसे इन 12 सालों में कही हो जो आपको हमेशा याद रहेगी?
0: मुझे तो इतना बातें प्रधानमंत्री जी की ओर से सुझाव, निर्देश या हमको गाइडेंस देते रहते हैं, तो एक बोलना मुश्किल है, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं कि देश हित में जो भी आपको दायित्व मिला है उसको पूरी तरह से निभाना है, इसलिए हम अपना ड्यूटी से प्रतिबद्ध हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी, आपने इतनी बेबाकी से ये सब बात कही। और जाहिर तौर पर देखिए 2014 से अभी तक की ये जो जर्नी है, इसीलिए हमने इसको भारत रीलोडेड का नाम दिया है, क्योंकि इस वक्त नए भारत की बात हो रही है और नए भारत का जो सपना भारतवासियों ने देखा था वो कितना पूरा हुआ, इस पर हमसे खास बातचीत की। नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी रीमा पराशर।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्ज थे आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

जी हाँ, ज़िंदगी क्या है, एक नगमा है, इस नगमे को गुनगुनाना है, यानी कि ज़िंदगी एक गीत दी तरह है। ते गीत भी ताही सोना लगता है जेकर वह हमेशा सुर ताल दे विच होएगा। जेकर बेसुरा गीत होएगा ते जेकर उहदे पिछे म्यूजिक चल रहा है, वह तबला किते वज रहा है, सितार किते वज रही है, हारमोनीयम किते वज रहा है, तो वह सिर्फ और सिर्फ एक शोर हुंदा है ना। तो वह शोर किसी भी पसंद नहीं आता, चाहे जिद्दां दा मर्जी होवे। इसे तरह जिंदगी जेकर ताल दे विच रहेगी, हर चीज़ जिंदगी दे विच बैलेंस विच रहेगी, तां जिंदगी एक सोहणे जे गीत दी तरह, एक सोहणे जे नगमे दी तरह सानू महसूस होएगी। लेकिन अगर जिंदगी इम्बैलेंस होएगी, बेताली होएगी, तो सिवाए शोर दे सानू जिंदगी कुछ नहीं लगेगी। और शोर बहुत सारा हुंदा जी साडी जिंदगी दे विच। शोर तां साडे दिमाग दे विच वी रहिंदा है हमेशा, कई तरह के विचार, कई तरह के सवाल जवाब साढ़े दिमाग दे विच चलते ही रहेंदे। इतों तक कि जो आप सौ जाने ना, उदों भी साढ़ा दिमाग शांत नहीं रहिंदा, उदों भी बहुत ज़्यादा भीड़ दे विच या बहुत ज़्यादा शोर दे विच असी हुन्ने आ। तो कोशिश करिए कि इस जिंदगी नू ताल दे विच लैके आईए, बैलेंस दे विच लैके आईए, शोर तों बाहर कढ़ीए। तो शोर तो ता ही बाहर निकलिया जा सकता जदों असी जिंदगी नू वर्तमान दे विच जीना शुरू कर दिए, हर उस पल वल ध्यान देिए जो असी जी रहे हैं, जो असी कम कर रहे हैं। अगर असी उत्थे प्रेजेंट रहांगे, साडा होश उस जगह दे उत्ते रहेगा, तो हर काम सही रहेगा और साडा दिमाग भी इधर उधर नहीं दौड़ेगा, इधर उधर दे विचारां दे विच नहीं उलझेगा, जो असी प्रेजेंट टाइम दे विच होश दे विच रहांगे। ए होश दी गल चली है तो मैनू ना एक कहानी याद आ गई, मैं सुनी सी ऑनलाइन। कहिंदे कि एक वारी ना सम्राट दे दरबार दे विच ना महात्मा बुद्ध आए हुए सन, ते उन्हां दा प्रवचन चल रहा सी। ते जिहड़ा सम्राट सी, जिहड़ा राजा सी ना, उसनू एक आदत सी कि वह बैठा बैठा ना अपने पैर दा अंगूठा हिलाण लग जांदा सी। ते महात्मा बुद्ध जिद्दां ही उहदा, महात्मा बुद्ध दा ध्यान उसदे पैर वल जांदा, ते महात्मा बुद्ध चुप कर जांदे। तो राजा ने एकदम पहला ध्यान दिता कि महात्मा बुद्ध चुप क्यों हो गए, उन्होंने देखा कि वो बुद्ध तो मेरे पैर वल देख रहे हैं। फिर उन्हें अपना फटाफट अंगूठा हिलाना बंद किया। फिर महात्मा बुद्ध ने अपने प्रवचन देने शुरू कर दिते। फिर थोड़ी देर बाद हुई तो राजे का पैर का अंगूठा फिर हिलन लग गया, क्योंकि उन्होंने आदत सी। तो महात्मा बुद्ध नज़र फिर उधर गई, वह फिर चुप कर गए। तो उस वक्त राजे नूं बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि बई सारे मंत्री बैठे हुए ने, मेरी राणी भी कोल बैठी हुई है, तो महात्मा बुद्ध अचानक मेरे पैर वल देखते हैं तो चुप कर जाते हैं। तो उसने महात्मा बुद्ध नूं कहा कि महाराज तुसीं अपना प्रवचन दो, तुसीं मेरे पैर वल ध्यान ना दो, मेरी तो आदत है, मैनूं पता ही नहीं लगता कि मेरे पैर का अंगूठा कदों हिलना शुरू हो जाता है, तो इस करके कृपा करके तुसीं मेरे वल ना देखो। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं ही तो जानना चाहना कि तेरे पैर का अंगूठा हिल क्यों रहा है, कि तेरा ध्यान किधर है। वह कहता कि ध्यान तो मेरा तुहाडे प्रवचना वाल है, लेकिन जो मेरे पैर का अंगूठा हिलदा तो मैनू पता नहीं लगता, मैनू होश नहीं रहिंदी। तो बुद्ध ने कहा कि जेकर तेरे शरीर के एक्शन जड़े हो रहे हैं, जड़े तेरे कर्म हो रहे हैं, इंद्रिया तो हो रहे हैं, जेकर तेनू इन्हों का ही नहीं पता लगता, फिर तू बाकी राजपाठ किदा तू संभालेगा। इस करके कहें कि जिहड़ा भी काम तुसी करो ना, वो होशपूर्व

क्या ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: फिर भी वो मालिक के करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: मुंह मिठा करन लगे हो, नौकरी लागे लगदी है, मुबारक फेरते। पर किते उन्होंने नौकरी देन तो पहला कोई पैसे जमा करवाउन दी गल ता नहीं कही? जे कही है तो फिर जागरूक बनो, ध्यान रखो, क्योंकि आजकल इन ठगण दे नवे तरीके ने, क्योंकि नौकरी देन वाले कदे भी पैसे नहीं मांगदे।
1: आजकल साइबर क्राइम दे नवे तरीकियां विच प्रचलित हो रहा है डिजिटल अरेस्ट, जिस विच कोई व्यक्ति अपने आप नूं किसी सरकारी अदारे दा अफसर दस के वीडियो कॉल दे जरिए ऑनलाइन इनक्वायरी दा डरावा दे के अरेस्ट करन दी धमकी दिंदा है, जिस दे डर नाल ओह किसी तों वी इनक्वायरी दे नां ते पर्सनल डाटा लै सकदा है ते उस नूं गलत तरीके नाल उपयोग कर सकदा है। कोई भी सरकारी अदारा किसी तरह दी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन नहीं मंगता। अपना पर्सनल डाटा देन तो पहला चंगे तरीके जांच पड़ताल कर लो, सावधान रहो, सचेत रहो, साइबर क्राइम तो बचो।
2: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

0: हेलो,
1: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाए। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
2: अजय ही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
3: आकाशवाणी जलंधर ते तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। असी गल कर रहे सी कि जिंदगी दे विच जेकर तुसी सफलता हासिल करनी है, अगे निकलना है, तो वक्त दे नाल कदम दे नाल कदम मिला के चलना पैना है। लेकिन इस वक्त दे नाल दौड़दे दौड़दे किते जड़ियां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साड़ी जिंदगी दियां चीज़ां ने ना, असी उन्हां नूं ना भुल जाइए, असी उन्हां नूं पिछे ना छड़ दईए। ओह ने साडे आपणे, जेकर साडे आपणे साडे नाल रहणगे, साडा परिवार जिहड़े सानूं दिलों प्यार करदे ने, साडे लई दिलों दुआवां मंगदे ने, ओह लोग जरूर साडे नाल रहणे चाहीदे ने। ओह साडे दोस्त, साडे चाहण वाले या साडे आपणे जिहड़े हमेशा साडी भलाई सोचदे ने, असी उन्हां नूं किते पिछे ना छड़ दईए। ओह जरूर असी नाल लै के चलणे ने। कहिंदे कि जिहड़े ए रिश्ते हुंदे ने ना, ओह पौद्यां दी तरह हुंदे ने, प्लांट्स दी तरह हुंदे ने। जिवें असी घरां दे विच पौधे लगाए हुए ने, सारिआं ने बूटे लगाए हुए ने, ते असी उन्हां नूं रोज़ जिहड़ा है ओह थोड़ा थोड़ा पाणी दिंदे हां तां कि ओह खिले रहण। इस तरह ही कहिंदे रिश्ते हुंदे ने, रोज़ थोड़ा थोड़ा आपणापण, रोज़ थोड़ा थोड़ा प्यार इन्हां रिश्तिआं नूं सानूं देना चाहीदा है, तां ही इह रिश्ते अगे कायम रहिंदे ने। जदों गर्मी आ जाती है उदों सानूं उन्हां बूटियां नूं दो वारी पानी देना पैंदा, तीन वारी पानी देना पैंदा, यानी ज़्यादा ख्याल रखना पैंदा। इस तरह जदों साडे आपणिआं दे उत्ते कोई दुख दी घड़ी आ जाती है, कोई संकट आ जाता है, उस वक्त जिहड़ी केयर हुंदी है ना साडी, उस नूं वधा देना चाहीदा है। आपणेपन जिहड़ा साडा उन्हां दे नाल हुंदा है उस नूं ज़्यादा शो करना चाहीदा है, उस नूं ज़्यादा दसना चाहीदा है, अपना प्यार दसना चाहीदा है कि हाँ मैं तैनूं बहुत प्यार करदा हाँ या करदी हाँ, मैं तेरे नाल हाँ, फिक्र नहीं करनी, टेंशन नहीं करनी। यह जिहड़े प्यार वाले बोल हुंदे ने ना, यही इंसान नूं बहुत उस वक्त सहारा दिंदे ने। बेशक असी किसे दा दुख घट नहीं कर सकदे, लेकिन जदों असी इस चीज़ दा अहसास उसनूं दे दिए कि मैं हमेशा तेरे नाल हाँ या मैं हमेशा तेरे नाल खड़ा हाँ, तां ओह जिहड़ा दुख है ना वह थोड़ा हल्का ज़रूर हो जाता है। इस तरह कहिंदे कि जदों सर्दियां हुंदियां ने उस वक्त तो फिर बूटियां नूं ज़्यादा भावें तुसीं हफ्ते बाद पानी दो तो भावें दस दिन बाद दो तां वी ओह ठीक रहिंदे ने। तो जदों इंसान खुश हुंदा है, अपनी जिंदगी दे विच वधिया हुंदा है, तां कोई गल नहीं, असी पांच दिन दस दिन उन्हां दे नाल गल ना भी करिए तां वी चल जांदा है, क्योंकि माहौल जिहड़ा है वह खुशी दा है। लेकिन दुख दे विच ज़्यादा केयर, ज़्यादा अपनापन वधा देना चाहीदा है, ताकि इह जिहड़े रिश्तियां दे बूटे ने ना वह मुरझाण ना, क्योंकि जदों इह मुरझाणा शुरू कर देणगे ना अपनेपन की कमी दे नाल फिर मर जाते हैं, फिर असी इन्हों दोबारा सजीव नहीं कर सकते। इस करके इन्हों रिश्तियां नू मरन तो पहला असी अपनापन देख के, प्यार देख के, केयर देख के इन्हों हरा भरा रखिए, ताकि साड़ी जिंदगी जड़ी है वह भी हरी भरी रहे। आओ फिर इस तरह के गीत सुनते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। और रक्षा मंत्रालय दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: अफगानिस्तान की जनता के कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दवा सहायता से संबंधित उपायों के माध्यम से अफगानिस्तान की सहायता जारी रखे हुए है। श्री जायसवाल ने बताया कि एमटी मैरीमैक्स जहाज के चालक दल के सभी 24 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
1: जब ये हादसा हुआ उस समय तुरंत ही हमारे भारतीय दूतावास जो कि ओमान में है तुरंत एक्शन में आए और वहां ओमानी अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया। तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और 2400 भारतीय नागरिक को सुरक्षित वहां से निकाला गया। ये सभी नागरिक हमारे नागरिक सुरक्षित हैं।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने विदेश नीति और कूटनीति

0: सामाजिक सुरक्षा राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई हैं।
1: The amount of time we have spent
2: हमने उन देशों के साथ लगातार बातचीत जारी रखी जो तेल गैस एलएनजी एलपीजी तथा उर्वरकों के उत्पादक हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित का विषय है। इसलिए विदेश नीति पूरी तरह से उस समय के प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप संचालित होती है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, दुनिया भर को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच प्रमुख क्षेत्रों में भारत की संतुलित भागीदारी पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिन के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर कोई दबाव नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों के आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
3: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए की डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पे एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका

0: खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी अधिनियम जी रामजी को सुचारू रूप से लागू करने को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
1: विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है। कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया। 95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी दे रहे हैं।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। सरकार ने अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
3: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
2: सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
4: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है। बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रह रहा हूँ।
2: सरकार ने मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ोन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित 3 विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों का आज स्वीकृति पत्र जारी किए। ये संस्थान ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यॉर्क विश्वविद्यालय और न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय हैं। ये विश्वविद्यालय महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये विश्वविद्यालय व्यवसाय, कंप्यूटर विज्ञान और साइबर सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में कार्यक्रम

0: लैप कराएंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने कल पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में बिहार, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कल लू चलने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. India expresses grave concern over killings of 30 civilians in deadly crackdown on protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Accuses Islamabad of using fake news to mask severe human rights violations. External Affairs Minister S. Jayashankar says foreign policy under Modi-led government during past 12 years is in sync with its core national goals. Prime Minister Narendra Modi holds telephone conversation with Emir of Kuwait on evolving security situation in West Asia. Government gives financial support of 1.23 lakh crore rupees to oil marketing companies to ease burden of rising crude oil prices. Home Minister Amit Shah inaugurates land port management system to digitize and streamline cargo processing and passenger movement across land borders, and Defence Ministry to establish 250 megawatt solar power project with battery energy storage system in Uttar Pradesh for strengthening long-term energy security. And now the news in detail. The Ministry of External Affairs today acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added, India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. Addressing the media in New Delhi, spokesperson at the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said that New Delhi continues to see a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. Mr. Jaiswal described them as a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses.
2: A pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are several reports of police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses.
1: Over 30 people have been killed and around 200 others have been injured in clashes between protesters and security forces in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Tensions in the region escalated after authorities banned the Joint Awami Action Committee, a prominent civil society alliance that has spearheaded protests over economic and political grievances in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has said that India's foreign policy is now in sync with its core national goals. The minister said that foreign policy and diplomacy have got integrated with priorities of the government, focusing on social security and national development. Dr. Jayashankar made these remarks in an interview given to DD News. He said that national security in the present time is not just about

0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी दा ए जलंधर केंद्र है। इस वेले रात दे 9:30 वज चुके ने। हुण पेश है प्रोग्राम खेड संसार। अज दे इस प्रोग्राम दे विच तुसी सुनोगे एथलैटिक कोच द्रोणाचार्य अवार्डी सुखदेव सिंह पन्नू होरां दे नाल कीती मुलाकात। इन्हां दे नाल गल्लबात कर रहे ने बिरेंद्र सिंह, पेशकश प्रतिष्ठा जैन।
1: खेड संसार। खेड संसार प्रोग्राम सुनने वाले नूं वीरेंद्र दा नमस्कार। एथलेटिक्स की दुनिया विच सुखदेव सिंह पन्नू का नाम बड़े अदब नाल लिया जाता है। सुखदेव सिंह पन्नू एथलेटिक्स दे ओ जौरी ने जिन्होंने कई एथलीट्स के टेलेंट नूं तराशिया ते उन्हां नूं राष्ट्रीय ते अंतरराष्ट्रीय पद्धर दे एथलीट्स बनाया। 2018 दीआं एशियाई खेडां विच ट्रिपल जंप विच सोन तमगा जितण वाले अरपिंदर सिंह भी उन्होंने विद्यार्थी ने।
2: मैं लगता इंडिया दे विच की वर्ल्ड दे टॉप दे हैगे कोच है, उन्होंने इन्हों का नाम आउंदा है। मतलब 2009 दे विच मैं इन्हों नूं ज्वाइन किया सीगा सेंटर दे विच लुधियाना। फिर मतलब काफ़ी लंबा समय ही असी इन्होंने मैं किया ट्रेन किया, वो मैं नैशनल रिकॉर्ड किया, कॉमनवैल्थ गेमों के ब्रोंज मैडल, एशियन गेमां हो गई, तो इदा के होर भी काफ़ी सारे सी कॉम्पीटिशन जिन्होंने मैं वधिया किया परफॉर्म किया अंडर रह गया।
1: साल 2000 दियां सिडनी ओलंपिक्स विच भारत की प्रतिनिधता करन वाले अथलीट अजय राज सिंह भी सुखदेव सिंह पन्नू होर अगे नतमस्तक हुंदे ने क्योंकि उही उन्हां दे कोच ने।
3: बहुत इहो जिहे पल ने जी जिंदगी दे जिहड़े कोचां दे नाल बिताए हुए ने, चेते भी आउंदे ने, सारी उम्र चेते भी रहणगे जी। यानी कि साडे वर्गे छोटे जिहे नमाणियां नूं मेहनत करा के जी इन्नी वड्डी अहुदे ते पहुंचाया जी, इन्हां दे सारा सदका ही इत्थे तक पहुंचे हुए हैं जी। बाकी गुरु महाराज की ओट आसरा कृपा जी ये याद रखाते हर एक चीज से। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर आप सी जी, तो बड़ी मेहनत कराई है इन्होंने जी। जिस समय जी मेहनत की असी बहुत डरते होंगे सी कोसा तो, असी इन्होंने सानू जिंदगी बहुत डिसिपलिन सिखाया जी भी लेट नहीं होना कभी भी। तो कोसा इन्ने क डेडिकेटड सके कि जी असी अपनी लाइफ की कही तो सानू बिना दसे कई बार उन्होंने थावान के उत्ते पहुँच गया जिन्हों थावान उत्ते असी एक्सेप्ट ही नहीं करते सके भी कोई बंदा भी इत्थे आ के भी सानू हल्लाशेरी दूगा जी कंपटीशन वास्ते जी।
1: कोचिंग नू इबादत समझन वाले सुखदेव सिंह पन्नू ने अपना सारा जीवन ट्रैकां दे ते ग्राउंडां दे लेखे ला दिता। उन्हां दे सैकड़े हजारां अथलीट स्टूडेंट ने जो दिलों उन्हां दा आभार प्रगट करते ने। अंतरराष्ट्रीय अथलीट हरप्रीत कौर।
4: मैं एथलैटिक्स दे विच 400 मीटर हडल भजदी सी। सुखदेव सिंह पन्नू मेरे परसनल कोच सीगे, इन्हां ने मैनू जीरो तो शुरू किया ते इंटरनेशनल लैवल तक पहुँचाया। सर मैं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी दे विच 6 मैडल लए। उन्होंने मैडलों के बिहाब से मैनू रेलवे में नौकरी लगी जो मेरे कोच की बहुत वड्डी देन सी मेरे वास्ते। मेरे कोच वर्गा मैनू नहीं लगता कि उस तो बाद मैनू कोई कोच मिलिया। साढ़े कोच बड़े ही स्ट्रिक्ट सीगे ते एकदम पंचुअल सीगे और बहुत डेडिकेटेड सीगे। सानू उन्होंने बड़े प्यार नाल भी ते डांट फटकार के भी ट्रेनिंग करवाई है। उन्होंने सा

सरगम दा अगला गीत पेश है फिल्म सूरज तो, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी दी, गीत दे बोल शंकर जय किशन दे, गीत दे बोल हसरत जयपुरी दे, ते तर्ज शंकर जय किशन दी।

अगला गीत पेश है फिल्म हमराज़ तो, आवाज़ महेंद्र कपूर दी, गीत दे बोल साहिर लुधियानवी दे संगीत रविदा।

0: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਗਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ ਅਤੇ 11:05 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
2: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, भारत दुनिया को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
3: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी आज, जैसे बिहार की मीटिंग था। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पे एक

पल्ले पिड़च पटोला बन के आवा हो जाए पल्ले पल्ले लट लट कर दिया बरन मशाला दो दूरे कुंड थले लट लट कर दिया बरन।

0: कर रहे हैं अभी बचे रही है। उदा
1: हाँ
0: जिहड़ी गर्मी है इस
1: बढ़िया,
0: वेले
1: नींबू
0: बहुत
1: पानी कुछ
0: ज्यादा
1: नहीं
0: है।
1: पीना चाहिए। और जिवें ओ पुराने समय के विच कच्ची लस्सी होंदी सी, ओह भी बहुत फायदेमंद होंदी है जी,
0: बिल्कुल जी बिल्कुल
1: जिन्ना वध तो वध पानी पी सको। हाँ जी
0: बिल्कुल सही गल है जी। वैसे भी गर्मी जिहड़ी है बहुत पिछले 2-3 दिनों तो बहुत ज्यादा है।
1: हाँ, ज्यादा ही जिवें कहने भी अग का गोला खटता कि नहीं।
0: बिल्कुल जी। सो ये जेकर मैं गल करा तो मेरे ख्याल में पिछले 10 क सालों तो जिहड़ा गर्मी का मियार है ज्यादा वध गया।
1: हाँ जी हाँ जी
0: पहला इन्नी
1: हाँ
0: गर्मी नहीं होंदी सी कितने पेड़ों के करके जां दरख्तों
1: हाँ
0: करके जां कुछ
1: हाँ
0: इन्ना मतलब खेत सिगे आसे पासे तो ठंडा ही हवा
1: हाँ
0: जिहड़ी चलती रहिंदी सी।
1: असीं भी पिंड च रहिंदे होंदे सी, साडा जन्म भी पिंड दा है, ते उस तो बाद कम कम असीं सिख लिया, ते फिर शहर च आ गए। फिर ओ पहला इस तरह हुंदा सी ना, कोई एसी उसी नहीं हुंदे सी,
0: बिल्कुल मैं
1: ते
0: वही कह रहा हाँ।
1: हुण शहर दे विच इन्ने एसी हो गए, गड्डियां च एसी लगे। हाँ जी वो गर्म हवा सिटदी है, ते फिर वो कंधा कुंधा बड़ियां तप जांदियां जी।
0: बिल्कुल सही गल है जी। ओदे करके जिहड़ी गर्मी है इस वेले
1: हाँ
0: वो
1: उन्हों फिर
0: काफी है।
1: पिंडा च वैसे अजे भी गर्मी इन्नी महसूस नहीं हुंदी जिन्नी शहर च हुंदी है जी।
0: बिल्कुल जी। सो बाकी बिल्कुल थोड़ी गल सही है भी पानी पुनी जिहड़ा वो पींदे रहना चाहिए। थोड़े थोड़े समय बाद
1: हाँ
0: पानी प्यास होवे ना होवे पर पानी पी लेना
1: हाँ
0: चाहिए। ओदे नाल थोड़ा जिहा जिहड़ा गर्मी दा जां
1: हाँ
0: लू दा डर है वो घट जांदा है।
1: पानी भी मतलब नॉर्मल जो थोड़ा पीना चाहिए, जिवें ज्यादा ठंडा पानी पी लिया तो फिर वो नाल फिर अपना गला खराब हो जाता जी।
0: बिल्कुल जी
1: हाँ जी
0: बिल्कुल ये भी एक वाकई
1: हाँ
0: बिल्कुल सही गल है। सो
1: हाँ
0: केड़े गीत की फरमाइश ने कहे आज।
1: बब्बू आंदा सुना दो फिर, बोली होती बोली पाऊ मुंडा। हाँ जी
0: बिल्कुल ठीक है जी। मैं थोड़ी फरमाइश पूरी करने जा रहा हूँ। कॉल करने के लिए शुक्रिया।
1: बहुत बहुत थैंक यू
0: थैंक यू जी।
1: करेंगे।
0: थैंक यू।

0: बिल्कुल जी, चुन्नी चिलकोड़ा हाड़ दिए नीचा ने चढ़े आ रहे हैं। गीत जगह अमरिंदर गिल साहब की आवाज़ से भी इतने प्रोग्राम चल रहा जी सौगात। तो मैं थोड़ा दोस्त रहा एक्चुअली थोड़े नाल पढ़िया होया। सो साडा नंबर है जी 0181 8342 171, यानी कि 0181 2342 171। यह नंबर डायल करके तुम इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हो तो कर सकते हो अपने पसंदीदा गीतों फरमाइशा तो नाले गल्लां बातां। सो अगले दोस्त भी आ गए जी, देखते हैं कौन आए ने। हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो। हाँ जी, सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम सुगात विच।
1: हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी।
0: जी कौन गल कर रहे हो तो कितों गल कर रहे हो?
1: रणजीत बोल रहा हूँ, शिपू बटर।
0: हाँ जी रणजीत जी, की हाल चाल है जी थोड़े?
1: ठीक है सर, वधिया। तुसी अपना सुनाओ।
0: जी साढ़े बहुत वधिया ने। ते की कर रहे थे इस वेले?
1: मैं थोड़े प्रोग्राम ही सुन रही जी।
0: अच्छा जी, चलो बहुत बढ़िया। ते केड़े गीत दी फरमाइश लेके आए हो फिर आज?
1: फरमाइश जी अपना हरजीत हरमंद से।
0: बिल्कुल ठीक है जी, मैं थोड़ी फरमाइश पूरी करने जा रहा हूँ। कॉल करने के लिए बहुत शुक्रिया जी।
1: थैंक यू
0: थैंक यू जी, थैंक यू।

सुपर को दोस्तों तुम इंजॉय कर रहे जी प्रोग्राम सौगात अपने दोस्तों अरुण के नाल पर जरा समा है वो हौली हौली एक बजे वालों बढ़ रहा से इस प्रोग्राम में इतने खत्म कर दी हुई इजाजत पर तुम कितने नहीं जाना क्योंकि हूँ तो कुछ पलों के बाद एक प्रोग्राम लेकर फिर हाजिर होगा तद बने रहो आकाशवाणी पंजाब।

दीन दुनिया तेरी टेक, सब मह रविया साहिब एक। अकाल पुरख न्योट्यां दी ओट, नितरियां दी तिर, न्यासरियां दा आसरा है। टेक, आसरा, पना, ए समान अर्थी शब्द हन, पर ए सच है कि टेक, आसरा, ओट, शरण उसे दी लुड़ींदी है जो अपने आप तो ताकतवर है, समर्था वाला है। तांते फिर अकाल पुरख प्रभु अग्गे दीना वांगू बेनती करनी चाहिदी है। हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या की जाए, बचनी तोर मोर मन माने, जन कौ पूरन दी जाए।

हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या की जाए। बचनी तोर मोर मन माने, जन काओ पूरन दी जाए। आप जी सरवण कर रहे सो भाई गुरमेल सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द। प्रभु दा ओट आसरा टेक शरण कल्याणकारी है। प्रभु दे चरण शरण विच किसे प्रकार दा दुख नहीं व्यापदा।

ऐसे नाम दी प्राप्ति हुंदी है जिसनु जपिया अकाल पुरख प्रभु किरपा करके अपने प्यारियां दी बांह फड़ के उनानु पव सागर तो पार कर दिंदा है। राग तनासरी विच गुर फरमान है, हर चरण सरन गोबिंद दुख पंजना, दास अपने कौ नाम देवो, दृष्ट प्रभ तारो कृपा करता रहो, पूजा गह कूप ते काड लेवो। सरवण करदे आ भाई गुरमीत सिंह शांत ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

0: हर चरण शरण गोबिंद दुख पंजना, दास अपने को नाम देवो, दृष्ट प्रभता रहो, कृपा करता रहो, पूजा गहकूप ते काड लेवो। इस शब्द गायन कीता सी भाई गुरमीत सिंह शांत ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे हां इस शब्द दी व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी बलवंत सिंह।
1: तनासरी महला पंजवां, घर नौवां पड़ताल, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर चरण सरन गोबिंद दुख पंजना, दास अपने को नाम देवो, दृष्ट प्रभ तारू, कृपा कर तारू, पूजा गह कूप ते काड लेवो रहाओ। काम क्रोध कर अंध माया के बंद, अनक दुखा तन शाद पूरे, प्रभ बिना आन न रखन हारा, नाम सिमराव हो सरन सूरे। पतत उदारणा जी जंत तारणा, वेद उचार नहीं अंत पायो, गुण है सुख सागरा, ब्रह्म रत्नागरा, भगत वशल नानक गायो। विचार अधीन शब्द साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी वल्लों तनासरी राग विच उचारण कीता होया है। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंग 683 उपर सुशोभित है। इस शब्द नूं नौवें घर विच गाउण दी हदायत कीती हुई है, जो पड़ताल गायन शैली दे अनुसार गायन करन दी हदायत है। इस शब्द दी एक विशेषता ये भी है कि शब्द दे आरंभ विच पहला मूल मंत्र दा संखेप स्वरूप दर्ज कीता होया है, जो इस गल दा प्रतीक है कि परमात्मा नूं मिलण लई सच्चे गुरु दी कृपा सदका मिलिया जा सकता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अंदर तनासरी राग नूं दसवां अस्थान प्राप्त है। तनासरी राग संबंधी सतगुरु जी फरमाउंदे हन, तनासरी तनवंती जाणीए भाई जा सतगुर की कार कमाए। हे भाई, तनासरी राग विच केवल तां ही पत्नी तनवान जानी जांदी है जद उह सच्चे सतगुर दी टहल कमाउंदी है। आओ शब्द दीआं आरंभक पंक्तियां दा पाठ करके विचार करिए जी। हर चरण सरन गोबिंद दुख भंजना, दास अपने को नाम देवो, दृष्ट प्रभ तारो, कृपा कर तारो, पूजा गह कूप ते काढ लेवो रहाओ। शहीदां दे सरताज रहमत करदे हां बख्शिश करदे हन, हे सृष्टि दे स्वामी अते सभना जीवां दी पीड निवृत करन हार वाहिगुरु जीओ, मैं तेरे सुंदर मुबारक चरणा दी पनाह लोचदा हाँ। सो इस लई अपने गोले नूं अपना अमृतमई नाम बख्श दिओ। हे स्वामी जीओ, मेरे उत्ते रहम कर दिओ, अपनी बख्शिश द्वारा मेरा इस संसार समुंदर विच्चों पार उतारा करवाउण विच मददगार होवो जी, अते मैनू बाहों फड़ के संसार रूपी खूह विच्चों बाहर कढ लवो जी, क्योंकि हे बख्शां दे भंडारे, मेरी केवल एक जीव है अते आप जी दीआं कनेरियां वड्याईआं हन। पर दीना बंधु पातशाह जीओ, तेरियां मुबारक चरना सदका नानक पार उतर जाएगा। इसे संदर्भ विच तनासरी राग अंदर होर जगह भी सतगुरु जी फरमाउंदे हन, तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सहेले, राखो राखण हार दयाला, नानक करके गोले। सतगुरु जी सोहना फरमान करदे हन, हर को नाम सदा सुखदाई, जा को सिमर अजामल उदरियो, गनका हुगत पाई। सदीव काल तो ही मालक स्वामी दा नाम आराम बख्शन हार है।

सरनी आयो नाथ निधान, नाम प्रीत लागी मन पीतर, मागन कौ हर दान। आप जी सरवण कर रहे सो भाई बलबीर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ये शब्द।

सगल पवन तारे एक थे किए बिस्तारे, पूर रे ओ सर्ब में आप है निरारे, हर गुण नाही अंत पारे, जी जंत सब थारे, सगल को दाता एक है अलख मरारे, आप ही तारन तारे, कुदरत है देखारे, बरन चहन नाही मुख नाम सारे, जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसार, एक जी क्या बखान है, हाँ के बल बल बल बल सद बलिहार, सर्व गुण निदान कीमत ना ज्ञान ध्यान, ऊचे ते ऊचो जानी जय प्रभ तेरो थान, मन तन तेरो प्राण एक है सूत है जहान, कमनी उपमा देओ बड़े ते बड़ान, जाने कौन तेरो प्यो अलख पार देओ, अकल कला है प्रभ सर्ब को तान, जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसार, एक जी क्या बखान है, हाँ के बल बल बल बल सद बलिहार।

जगास को वेद बाणी सहतो बेरंच जस गावे जाको सेव मुन गहे ना तो जात का बलास को जाको जोगी जाति सिद्ध साधक अनेक तप जटा झूठ भेख किए फिर तो उदास को सो तिन सतगुर सुख पाए।

0: जग और न याहे महात्म मैं अवतार उजागर आन कियो तिन के दुख कोटिक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो एह पद्धत ते मत चूकै रे मन भेद विभेद न जान बियो प्रत्यक्ष हृदय गुर अर्जुन कै हर पूरन ब्रह्म निवास लियो।
1: सत रूप सत नाम सत संतोख धरयो उरे आदि पुरख परतखे लिखियो अक्षर मस्तक तुर प्रगट ज्योत जगमगै तेज भूमंडल छायो पारस परस परस परस गुर

0: गुरु सगळे श्रेष्ठ लागे बेतरो।
1: सतगुर खेमा ताणिया जुग जूत समाणे, अन पौ ने जा नाम टेक जित भगत अगाणे। गुरु नानक अंगद अमर भगत हर।

मुर्ग मिरत पयाल भूमंडल सगल व्यापे माए। जी उदारण सब कुल तारन हर हर नाम त्याए। नानक नाम निरंजन गाइए पाइए सर्ब निदाना। कर कृपा जिस दे स्वामी बिरले काहू जाना। नानक नाम निरंजन गाइए पाइए सर।

बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याहे। फिर अंगद गुर ते अमरदास। राम दस हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद ना सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइया जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नाव निधि आवै ताए। सब थाई होए।

तगन नारी पलके थुक पवैन तदाड़ी तगना पैरी तगना हथी तगना जिहवा तगना खी वे तगा पिवत बट तगे वरा कथै।

कूड रहया भरपूर मथा टिका तिड़ धोती का खाई हथ श्री जगत का साई नील वस्त्र पैर हो वह प्रवान मलेश धान ले पूजे प्राण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके उपर किसे ना जाना देखे चौका कड्डी कर उपर आए बैठे कूड़ियार मत पिटे वे मत पिटे एहवान साडा पिटे तन पिटे फेड़ करेन मन जूठे चुली परेन कहो नानक सच त्याई है सुच हो वे ता सच पाई पौड़ी।